0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG, वेबसाइट omzorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

ऋषि प्रिस्वानी पर इस वक्त आप हैं सताक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ पर चल निकले हैं जिन्हें आपके साथ बांट रही हूँ आज। और आज के ये किस्से खास हैं। आज वैलेंटाइंस डे तो नहीं है लेकिन उसके बाद भी आज का ये जो एपिसोड है ये प्यार पर है, जज्बातों पर है, हमारे इमोशंस पर है, हमारे वो इमोशंस जो किसी के साथ हम कनेक्ट करते हैं, जो किसी के साथ हम जोड़ते हैं। आज उस बारे में बात हो रही है, आज उन इमोशंस पर बात हो रही है, आज बात हो रही है दिल के जज्बातों पर। एंड आई होप कि आज की बातों से आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। आई होप कि आज के जज्बात जो है वो आपके साथ जुड़ रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारी बातें हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर मैं लगातार बोल सकती हूँ तो भी कम है। और जब ये टॉपिक याद आता है और कुछ याद नहीं आता है कि क्या जिंदगी का फलसफा आपके साथ डिस्कस करूँ। सो बहुत सारी बातें आज अभी हम आगे भी करने वाले हैं लेकिन गाने जो है मॉर्निंग के बहुत ही खास और स्पेशल होते हैं। तो चलिए इन गानों को सुनिए जरा और उसके बाद बात करेंगे ब्रेकअप, ब्लॉक कर देना किसी को अपने सोशल नेटवर्क से, ये सब बहुत आम बातें हैं ना, इसी बारे में भी बात करेंगे। सुनते रहिए इट हैपेंस सताक्षी के साथ और आइए आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ।

कल दोस्तों, आज वो जमाना है सोशल नेटवर्किंग का, जो जमाना जो है, जो मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों में ये कहा जाएगा कि ये जमाना जो है ये ब्लॉक करने का जमाना है ना। पहले जरा मुश्किल होता था, लेकिन आजकल फट से ब्लॉक बटन दबा देना, उसे अपने सोशल नेटवर्किंग की वेबसाइट्स, जितनी भी आपकी साइट्स हैं उससे ब्लॉक कर दिया, फोन पर ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पर ब्लॉक कर दिया, ये जो है ये कॉमन होता जा रहा है, किसी से नाराज होकर ब्लॉक कर देना। लेकिन ब्लॉक करना और दिल से ब्लॉक करना, आप फोन पर ब्लॉक करना जरा आसान है, लेकिन क्या आप उस इंसान को दिल से ब्लॉक कर पाते हैं? क्या आप उस इंसान को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर पाते हैं? देखिए, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कनेक्शन जो है वो हम दिल से जोड़ते हैं, है ना। तो क्या वो कनेक्शन जो है, जो दिल से जोड़ा है आपने, वो कनेक्शन सिर्फ सोशल नेटवर्किंग पर ब्लॉक कर देने से ब्लॉक हो जाता है? ये सोचने की बात है ना। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो इंसान आपके दिल में एक बार बैठ जाता है ना, उसे दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता है। तो ये सब जो है ये बचकानी हरकतें हैं, ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया, फिर ब्लॉक किया, फिर अनब्लॉक किया, ये मस्ती है, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर देना। सोचिएगा जरा।

बैक रेडियो प्रसवानी 1701 AM आप हस्ताक्षी के साथ और ये है आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस और बेहतरीन सुबह में। जी हाँ, बेहतरीन सुबह इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हर सुबह बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन होती है। और अभी बात करेंगे कि प्यार अंधा क्यों होता है। ऐसा कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड, क्यों कहते हैं ऐसा, ऐसा क्यों होता है, क्यों कहा जाता है, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल मॉर्निंग ट्रैक्स का ये जो सफर हमारा है इसमें आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे जज्बात, बहुत सारे इमोशंस जो है वो ये गाना भी अपने अंदर समाये हुए हैं। इसे एंजॉय कीजिए और मेरे साथ यूं ही सुनते रहिए आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

कहते हैं लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। आपको पता है ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भी आप किसी से इश्क करते हैं, जब भी आपको किसी से मोहब्बत होती है, तो आपको मोहब्बत सिर्फ उस इंसान की अच्छाइयों से नहीं होती। प्यार जो है वो अपने अंदर अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों समाये होता है। वो दोनों ही उस इंसान में, जो उसकी अच्छाइयाँ हैं और उसकी बुराइयाँ हैं, आप दोनों से प्यार करते हैं। आपको कई ऐसी चीज़ें हैं जो उस इंसान की नापसंद होती हैं, लेकिन फिर भी धीरे धीरे आप उन्हें पसंद करने लगते हैं, आप उन्हें अपना लेते हैं। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, है ना? जब आपको लगे कि वो सारी चीज़ें जो आपको एक इंसान में शायद आप सोचा करते थे कि पसंद नहीं आएंगी, आप उनकी तरफ भी खिंच रहे हैं क्योंकि उस इंसान में वो खामियाँ हैं, तब आप समझ लीजिए कि आपको इश्क हो गया है, आपको मोहब्बत हो गई है। सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रसवानी 107.1 एफएम पर।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट चैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, चैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: बन के।
1: जिंदगी में हार तब तक नहीं होती जब तक आप हार नहीं जाते। दुनिया की कोई भी ताकत आपको तब तक नहीं हरा सकती है दोस्तों, जब तक आप हार ना मान लें। और इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अपने मन को कभी हारने मत दीजिए। सिचुएशंस हो या कोई इंसान, उससे हार मानने की जरूरत नहीं है। कभी भी गिव अप मत कीजिए, क्योंकि जहां आप गिव अप करते हैं वहीं आप हार जाते हैं। जहां आप हार के बारे में एक थॉट क्रिएट कर देते हैं, सोच लेते हैं, वहीं आप हार जाते हैं। हार को अगर खुद से दूर रखना है तो पॉजिटिव होकर देखिए। और यकीन मानिए, कहना सिर्फ आसान है और करना मुश्किल है, ऐसी बात नहीं है। जब तक हम हार नहीं मानते हैं, हमारे सामने सफलता के, सिचुएशन से निकलने के 500 अवसर खुलते चले जाते हैं। लेकिन जहां हम हार मान लेते हैं, वो उसका जो सॉल्यूशन है आपकी प्रॉब्लम का, या उस प्रॉब्लम से निकलने का जो हल है, वो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको नजर नहीं आता है। इसीलिए कह रही हूं, विश्वास कायम रखिए अपने ऊपर, ना सही उस ऊपर वाले पर, कि जब आप हार जाएंगे, जब आप हारने लगेंगे, तो वो हमेशा आपका साथ देगा। और आपको हाथ पकड़कर ना निकाले उस सिचुएशन से तो कोई बात नहीं, लेकिन एक रास्ता जरूर बनाएगा आपके लिए। और वो रास्ता आपको नजर आए, इसके लिए जिंदगी में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहते हैं ना, ऊपर वाला भी आपका तभी साथ देता है जबकि आप खुद का साथ देते हैं। तो जिंदगी में कभी भी हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव रहना है, सिचुएशन से लड़ते रहना है। रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

ख्वाब तो सब देखते हैं दोस्तों, लेकिन ख्वाब मुकम्मल उन्हीं के होते हैं जो ख्वाब बंद आंखों से नहीं खुली आंखों से देखते हैं। और अब जो ख्वाब आपने कल बंद आंखों से देखे थे उन्हें खुली आंखों से मुकम्मल करने का वक्त है। दोस्तों ये वक्त है मेरे यहाँ से विदा लेने का, लेकिन आपके लिए ये वक्त है उन सपनों को जीने का जो आज आपको पूरे करने हैं कल रात को देखे हुए सपने। और इसीलिए यहाँ पर आज मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ ताकि आप अपने सपनों की तरफ एक नया कदम बढ़ा सकें। कल फिर इसी सफर में आपके साथ मुलाकात जरूर होगी। लेकिन हाँ, जाते जाते ये जरूर कहूंगी कि हमारे फेसबुक पेज पर जुड़िए, हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए ताकि आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर पाएं। हमें बताइए वहां पर कि आपको हमारे शोज कैसे लग रहे हैं और क्या नया, क्या खास, क्या अनोखा आप इसमें चाहते हैं। अपनी च्वाइस हम तक पहुंचाइए, हमसे कनेक्ट करिए, हमसे बात करिए। तो मिलते हैं फिर कल तक के लिए अपने फेसबुक पेज पर। फिलहाल कल इट हैपेंस में आपसे यहां पर जरूर मुलाकात होगी कुछ नए गीतों और बेहतरीन बातों के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी।

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.1 ते जीआरजे संदेश शलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुक्या है जी ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असीं ढेर सारियां थोड़े नाल थोड़ियां मेरियां अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे कुछ गीत ज्यादा सुनांगे फिलहाल थोड़ी पसंद दे मेरी पसंद दे सब दी पसंद दे रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है ते फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बसवानी 101.1 साडे फेसबुक पेज है जी bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है अपना पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देख कर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: It's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए। देखो सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट ते इस विच ओ खर्चा हुंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पपी लैगी सुणो।
2: Black Lives Matter.

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिन से बने हुए हूं। जिम्मे तुम पहला दस्या ना कि किवें तय होंदा है कि फिल्म हिट है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लिए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म केड़ी हुंदी है, ता जिहड़ी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाउंदी ना 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाउंदी, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ दे विच बणी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर हुंदी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप हुंदी है। ते एवरेज फिल्म केड़ी हुंदी है, एवरेज हुंदी है फिल्म अपनी लागत कढ लैंदी है कि ते मामूली मुनाफा कमाउंदी है कि, यानी कि 1 करोड़ दे विच बनी है कि ता 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ दे विच बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर दी जे कमाई कर ले तो वह हिट हुंदी है। ते सुपर हिट ए फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट हुंदी है। ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज्यादा कमाई करे।

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.9 FM ते जी आज संदेश चौलक दे नाल तुसीं बने हुए हो। हां जी, तां देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं तां लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर से हाथ विच जो पैसा आता है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैं। फिल्म तद हिट मनी जाती है जब डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होगी।

0: मामा, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक, और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
3: दिस इज अमिताभ बच्चन और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
4: हाय गाइस, आई एम मनमीत, वन ऑफ द मीत ब्रदर्स, एंड आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
5: Hi, this is Salman Khan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पे।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101.1 FM ते जी आज संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड दी गल कर रही हां, शायद कईयां ने पहली बार सुनिया होना, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा विच समझिया जावे तो स्लीपर हिट ओ फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत विच इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, बारहवीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

उम्मीद हैगी है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेडे बॉलीवुड लवर है, बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है, बेशक को कोई भी बॉलीवुड की देखते हो, टॉलीवुड की देखते हो, हॉलीवुड की देखते हो, साउथ की देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे जानी, तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुम बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुम चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी वन सनो वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो बिसवानी एट बिसवानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई डी है, जेड़ा भी अपना चाहते हो अपनाओ, सा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचन वेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं? तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 Event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ फोर्टिस मेडांटा सी के बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्सोर्ग स्पेल्ड OMSORG वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360 ओम्सोर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वड्डे डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द
4: ओए राहुल वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Hmm, go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400.

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 Wembley Road, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट निलमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435, याद रहे 0400664435, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा वो क्या?
4: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा?
4: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है. अ प्लेस टू कॉल होम खोजो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। और कैसे हो आप सब। जी हाँ, कैसा फील कर रहे हो। मिडवीक आ गया है और हवाओं में मस्ती, फेस्टिविटीज, सब कुछ छाई हुई है। जी हाँ, नवरात्रे चल रहे हैं। अगेन आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है चौथा नवरात्रा माँ कुष्मांडा का और मैं अगेन यही कहूँगी कि माता रानी आपके घर में बहुत सारी खुशियां लेकर आए, ब्लेसिंग्स लेकर आए। आप हमेशा हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और ऐसे ही मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, यही हमारी कामना है आप सबके लिए। जी हाँ, इसी के साथ आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के साथ और वो है एक हेल्दी रिचुअल। जी हाँ, एक ऐसा रिचुअल जो हमें हेल्दी रखता है फिजिकली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली, कैसे भी आप कह सकते हो, और ये किसी भी स्ट्रेस बस्टर से कम नहीं है। जी हाँ, तो अगर आपको कभी स्ट्रेस हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो कि क्या चल रहा है, केओस आपके आजू बाजू हो रहा हो, तो ये गहरी लंबी सांसें लीजिए। आप अच्छे से सोचना शुरू करेंगे, आप अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे किसी भी केओटिक सिचुएशन में। जी हाँ, तो सबसे पहले आइए वही करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अच्छा फील करते करते शुरुआत होगी प्रोग्राम की एक बढ़िया से गाने के साथ और थोड़ा शायराना अगर माहौल हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि पहले गाने का नाम ही शायराना शायराना है। हॉलिडे मूवी का ये गाना आप सबके लिए। करते हैं फिर और भी बहुत सारी गपशप।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एकदम मस्त मस्त शुरुआत हमारे प्रोग्राम की तो हो ही गई है, तो थोड़ा मस्ती से आगे बढ़ते हैं और मौसम की क्या मस्ती है उसके बारे में भी जानते हैं। जी हाँ, सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस के करीब है टेम्परेचर। फील आपको हो रहा है 22.2 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, वहीं अगर रात की बात की जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस तक तापमान के रहने के चांसेस हैं, 1 से 5 mm बारिश होने के भी चांसेस थे। जी हाँ, और 60% चांसेस ये है। जी हाँ, और इससे मुझे दिख रहा है कि कुछ इलाकों में बारिश जो है वो अभी भी हो रही है कुछ इलाकों में। अब इसमें आपका इलाका शामिल है या नहीं वो तो आप ही मुझे बताएंगे, लेकिन जितना मैं देख पा रही हूँ कि बारिश जो है वो ऐसे ही चलती रहने वाली है कुछ इलाकों में। जी हाँ, इसी के साथ एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट, या नॉट जस्ट फेयर बट एक्सीलेंट। आज की बात हो गई तो अब जरा कल की बात कर लें। जी हाँ, थर्सडे को 24 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा विद 70% चांसेस ऑफ रेन। वहीं अगर बात की जाए फ्राइडे की तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहेगा विद 70% चांसेस ऑफ रेन। जी हाँ, तो मैंने जैसे कहा था कि बारिश जो है वो ऑलमोस्ट आपको रोज ही मिलने वाली है। हाँ, ये डिपेंड कर सकता है कि आपके इलाके में बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, बट कुछ इलाकों में जरूर होगी और वो इलाके चेंज हो सकते हैं हर दिन के हिसाब से। तो आप मुझे बताइए, क्या पिछले कल आपके इलाके में बारिश हुई, रात को आपके इलाके में बारिश हुई, या आज आपके इलाके में बारिश हुई, या अभी आपके इलाके में बारिश हो रही है, क्योंकि तभी हम आपको आगे की बात बता पाएंगे। जी हाँ, सो छाते के बिना मत निकलिएगा, ये मैं हमेशा कह रही हूँ, पिछले दो दिन से कह रही हूँ, क्योंकि यही मौसम जो है वो बना रहने वाला है। एंड जैसे मैंने कहा था कि आगे चल के मुझे और भी ज्यादा बारिश दिख रही है सैटरडे संडे के बाद, सो या बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड इसी के साथ मस्ती में आगे चलते हैं और एक और खूबसूरत सा गाना आपको सुनाते हैं जो कि आपको दीवाना करने वाला है। वेल, क्यों मैं ये कह रही हूँ, आप गाना सुनिए, आपको खुद ही समझ आ जाएगा।

के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो चुकी है। मौसम का हालचाल भी आपको बता दिया गया है और अब जरा बात कर लेते हैं आपकी फरमाइशों की, क्योंकि अगर हमारे इस प्रोग्राम में सबसे खास कोई चीज है जो हमारे इस प्रोग्राम को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाती है, तो वो है आपकी फरमाइशें, मतलब रेकमेंडेड सॉन्ग्स जो कि आपकी तरफ से आते हैं। जी हाँ, आपको करना क्या है, बस फोन उठाना है, अपना नंबर डायल करना है। नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रही हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सब के लिए इस बारिश को ऑनर करने के लिए।

जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हम बाकी चीजों के बारे में बात करें, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज पूछनी है। जी हाँ, और ये चीज बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ होता है और मुझे पता चला है कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि और भी लोगों के साथ होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मेरे लिसनर्स के साथ भी ऐसा होता है या नहीं होता है। वेल, आपको तो पता ही है सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कितनी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है, फैशन से रिलेटेड, खाने से रिलेटेड, क्रिएटिविटी से रिलेटेड, मीम्स, कितना कुछ, राइट? लेकिन उसमें सबसे ज्यादा चीज जो आपको अट्रैक्ट करती है वो कुछ और नहीं बल्कि खाना। अब आप लोग बोलोगे कि निवेश शर्मा, नो नो नो नो नो नो नो, ब्रेक लगाइए, बिकॉज सबके साथ ऐसा नहीं होता है, सिर्फ कुछ भुक्खड़ लोगों के साथ ऐसा होता है। और यू आर अ भुक्खड़, आई एम अ भुक्खड़, आई नो दैट वेरी वेल। बट द थिंग इज कि जब भी मैं इंटरनेट चलाती हूँ, मेरे सामने कोई बंदा आ जाता है या कोई लेडी आ जाती है और वो बड़े ही अच्छे से कुछ यमी सा बना रहे होते हैं, एंड गेस व्हाट, मुझे इतनी ज्यादा जोर की भूख लगती है कि मेरा मन करता है मैं कुछ खाना शुरू कर दूं। मतलब वो अब इस पॉइंट पर पहुंच गया है कि अगर मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है और मैंने ऐसी कोई वीडियो देख ली है तो मैं लिटरली एकदम पागलपन की हद तक पहुंच जाऊंगी। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, इतना सीरियस हो गया मामला? या मतलब लोग अपने क्रशेस को देखकर पागल हो जाते हैं, लोग किसी खूबसूरत अटायर को देख के पागल हो जाते हैं, मैं खाने को देख के पागल हो जाती हूँ, एंड दैट इज द फनीएस्ट थिंग। सो आई हैव टू हैव समथिंग विद मी व्हाइल आई एम वॉचिंग एनीथिंग दैट हैज समथिंग टू डू विद फूड। मतलब कोई भी इन्फ्लुएंसर, फूड इन्फ्लुएंसर अगर कहीं कुछ अच्छा ट्राई कर रहा है तो आई ऑल्सो हैव टू हैव दैट। और अगर मेरे पास वो नहीं है और वो खाने के मीन्स नहीं है तो मेरे पास कुछ तो होना चाहिए खाने का। लेकिन एक और चीज है, मतलब जब मेरा पेट भरा होता है तो मुझे वो चीजें अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, लेकिन अगर मैं इसे देख लूं और कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी बहुत भूख लग रही है तो वो भूख इस लेवल की तेजी से बढ़ जाती है कि फिर उसे रोकना बहुत ही मुश्किल है, मतलब नामुमकिन है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? और मैं आपको सच बता रही हूँ, इस वक्त इंटरनेट इतना ज्यादा खतरनाक हो गया इसलिए नहीं क्योंकि लोग कुछ गलत बातें कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वहां पर खाने की वीडियोस हैं और जो लोग भुक्खड़ हैं उनको खाने की वीडियोस दिख जाए और अगर उनको खाना ना मिले तो उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आई एम टेलिंग यू, आपके साथ भी होता है क्या ऐसा? जरूर मुझे बताइएगा। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन गजब का है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
5: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
6: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आर शेनिविया के साथ। दोस्तों, वो वक्त याद है आपको जब आप ऑर्कुट चलाया करते थे? जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ऑर्कुट जो कि चला गया था अब वो वापस आ रहा है। जी हाँ, ऑर्कुट इज प्लानिंग अ कमबैक एंड प्रॉमिस कर रहा है वो लोगों को कि इट विल ब्रिंग बैक बिलव्ड फीचर्स सच एज कम्युनिटीज एंड टेस्टिमोनियल्स वाइल यूजिंग AI टू इनकरेज हैप्पीनेस, कनेक्शन एंड बिलोंगिंग। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि ओ मतलब ऑर्कुट आ रहा है, दैट इज वन थिंग, लेकिन ये प्रॉमिस कर रहा है ये सब चीजें? निविया, to explain? Well, of course, I will. So, यहाँ पर जो ऑर्कुट के CEO हैं वो कह रहे हैं कि my mission is more important than ever with AI. Well, he's gonna use AI, but AI का use वो किस चीज के लिए करने वाले हैं वही वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। So, ऑर्कुट जो है, it will bring back beloved features like communities and testimonials, और ये सारी चीजें वो AI का इस्तेमाल करके करेंगे, लोगों में happiness बढ़ाने के लिए करने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने एक और चीज कही है। उन्होंने कहा है कि इमेजिन एन AI हुज पर्पस इज नॉट एक्चुअली टू गो टू द फोन बट हैव यू पुट द फोन डाउन एंड गेट टुगेदर विद योर फ्रेंड्स। Well, that's a great idea. I'm telling you. Because AI is doing just the opposite right now. जी हाँ, मतलब हमारा फोन हमारे हाथ में, हम गपशप भी आजकल AI से कर लेते हैं, चैट बोट से ही हम गपशप कर रहे हैं, और ये चीज जो है वो कितनी ज्यादा गलत है। एट द एंड ऑफ द डे हमें इंसानों के साथ गपशप करनी चाहिए। आई नो आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि इंसान होने भी तो चाहिए लाइक गपशप के। वेल, कुछ अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर, कुछ गड़बड़ भी हैं, आई एग्री, बट आपको गड़बड़ पे ध्यान नहीं देना है, आपको अच्छी और पॉजिटिव चीजों पर ध्यान देना है। जी हाँ, और ऑर्कुट के जो सीईओ हैं, जो कि ऑर्कुट का प्लान कर रहे हैं कमबैक, उनका ये भी कहना है कि एआई कैन बी इनक्रेडिबल बट यूजिंग इट टू रिप्लेस ह्यूमन क्रिएटिविटी और कनेक्शन इट विल बैकफायर। वेल, ये तो मैं डे वन से कह रही हूँ, पहले दिन से। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि यूजिंग डाटा टू प्रमोट हैप्पीनेस, कनेक्शन एंड कम्युनिटी इज गुड, यूजिंग इट टू इन्फ्लुएंस इलेक्शन, स्प्रेड इन्फॉर्मेशन और शेयर इट विद थर्ड पार्टी इज बैड। चलिए ठीक है, एटलीस्ट किसी ने तो ये समझा है। नाउ ऑफकोर्स आई नो एंड आई स्टिल रिमेंबर द टाइम वी यूज टू यूज ऑर्कुट, सो ऑफकोर्स इफ इट्स गोना कम बैक एंड ये सब प्रॉमिस कर रहा है तो मैं आई एम लिटरली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? क्योंकि इससे पहले एक डाटा आया है जहां पर कहा गया था कि इन 5 ईयर्स 95% यानी कि 95% जो लोग हैं वो लोगों से बात नहीं करेंगे, ह्यूमन से बात नहीं कर रहे होंगे, वो एआई बोट से बात कर रहे होंगे। सो दैट कैन बी अ वेरी हॉरिफाइंग सिचुएशन। सो इफ ऑर्कुट इज प्रॉमिसिंग दिस, वेल लेट्स सी वो क्या सर्व करता है प्रॉमिसेस, और उन प्रॉमिसेस को पूरा करना दो अलग बातें हैं। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM शो चल रहा है ये इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निवा के साथ। दोस्तों इसी के साथ वर्ल्ड का यंगेस्ट ऑथर हमें मिल गया है। जी हाँ, इंडियन अमेरिकन बॉय अद्वे जैन जो कि लिटरली वर्ल्ड का यंगेस्ट मेल ऑथर बन गया है इन जस्ट 3 years and 345 days old। मतलब अभी 4 साल का भी ये बच्चा नहीं हुआ है और ये ऑलरेडी ऑथर, मतलब ही इज ऑलरेडी ऑथर। जी हाँ, ये ऑथर तो बन गया है लेकिन इनका नाम जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ऑफकोर्स आ गया है। आप लोग अगर मेरी मम्मी को पूछोगे कि अगर आप निविया की बात करें तो क्या लगता है निविया किस में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकती है, तो वो कहेंगे खाने और सोने में ऑफकोर्स। सो या मेरे के पेरेंट्स मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, सोच के भी दुख होता है। बट अगेन आप मुझे बताइए, अगर आपके बच्चों की बात हो तो आपको क्या लगता है आपके बच्चे कौन से एरिया में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी वेरी फनी क्वेश्चन। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द अद्वे जैन। जी हाँ, सो ये एक इंडियन अमेरिकन बॉय है जो कि लिटरली यंगेस्ट मेल बन गया है टू पब्लिश अ बुक एट जस्ट 3 years and 345 days old। जी हाँ, उसकी बुक है, जी हाँ, इस बच्चे की बुक है जिसका नाम है डीनो लर्न्स नॉट टू वेस्ट फूड। जी हाँ, और ये पढ़ाती है बच्चों को, सिखाती है बच्चों को एन इम्पॉर्टेंट लेसन अबाउट अप्रिशिएटिंग फूड एंड अवॉइडिंग वेस्ट, एंड आई थिंक दैट इज सच अ इम्पॉर्टेंट लेसन। हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं लेकिन एक चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा सिखानी चाहिए वो है कि कभी भी अपने खाने को वेस्ट नहीं करना है। जी हाँ, अप्रिशिएट करना है जो भी आपको खाना मिल रहा है, उसको वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज देयर आर पीपल जिनको वो भी नहीं मिल पा रहा है। सो हमेशा ग्रेटफुल फील कीजिए। एंड यू नो व्हाट, इसके दो फायदे हैं, ऑफ कोर्स आप खाना वेस्ट नहीं करोगे और दूसरी चीज आपको यूनिवर्स पे भर भर के चीजें अच्छे से देगा, बिकॉज व्हेनेवर यू फील ग्रेटफुल, व्हेनेवर यू डोंट वेस्ट एनीथिंग, एस्ट्रोलॉजिकली आपके प्लैनेट्स भी अच्छे हो जाते हैं और दूसरी चीज यूनिवर्स आपको ग्रेटफुल फील करने के लिए भी रिवॉर्ड करता है। सो आई थिंक दैट इज द केस, एंड इस बच्चे को भी रिवॉर्ड कर दिया गया है क्योंकि इतनी प्यारा सा टॉपिक लेके इस बच्चे ने जो है इस किताब को लिखा है वो कितनी ज्यादा प्यारी। वेल ऑफ कोर्स इस बच्चे ने एग्जैक्टली नहीं लिखा होगा लेकिन थॉट्स उसके होंगे, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 साल, मतलब ऑलमोस्ट 4 साल की उम्र में ये कर पाना बहुत बहुत रेयर है। जी हाँ, आपको मैं बता दूं कि ये बच्चा जो है वो अपने प्री स्कूल एक्सपीरियंस से जो है वो इंस्पायर हुआ। जी हाँ, अद्वे ने अपनी इमेजिनेशन को टर्न किया अपनी पब्लिश्ड स्टोरी में। जी हाँ, अपनी पब्लिश्ड स्टोरी में, और उन्होंने अपनी ऑफकोर्स अकेले नहीं किया, अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के साथ किया। एंड यू नो कूडोस टू हिज पेरेंट ऑल्सो, बिकॉज पेरेंट्स जब अपने बच्चों का साथ देते हैं हमेशा बचपन से ही, छोटी उम्र से ही, तभी वो कली से फूल बन पाते हैं, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जी हाँ, so the book has reportedly sold over 1300 copies worldwide. जी हाँ, and creativity runs in the family. जी हाँ, so इसकी जो 12 साल की जो बहन है आव्या जैन, वो भी अपनी एक बुक पब्लिश कर चुकी है। अगर गलती से भी ये मेरी मम्मी को पता चल गया ना, देन मेरी मम्मी एक ही चीज बोलेगी कि तुम सोती रहो और खाती रहो, वहां छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपनी किताबें लिख के पब्लिश करवा चुके हैं, तुम क्या कर रही हो। या दैट्स व्हाट शी इज गोना से, सो आई होप शी इज नॉट लिसनिंग टू इट। जी हाँ, बट या कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दिस बॉय, बिकॉज जो इसने किया है वो किसी ने नहीं किया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एट जस्ट एज 3। जी हाँ, अभी 4 भी पूरा नहीं हुआ था। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, CK बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत, जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहाइश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
4: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
5: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
4: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadda rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
5: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
4: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
6: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में भी ये थॉट आ रहा है कि ओके ठीक है, ये वाला फीफा तो हो गया, अगला वाला फीफा जो कि स्पेन में होने वाला है वो हम कहाँ देख पाएंगे? जी हाँ, वेल ऑफकोर्स आप फीफा स्पेन में देख पाएंगे। और अगर आप स्पेन में नहीं देख सकते हैं, अगर आप उसे देखना चाहते हैं डिजिटली, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने इसके राइट्स को खरीद लिया है। आपने सही सुना, नेटफ्लिक्स को ये डील मिल गई है जो कि लिटरली ग्राउंड ब्रेकिंग है। सो इससे पहले नेटफ्लिक्स जो है वो स्पोर्ट्स वाले सेक्टर में थोड़ा सा कमजोर था, लेकिन उसने बोल दिया है कि ओके आई हैव मनी, आई गॉट यू ब्रदर, एंसेस्टर। जी हाँ, सो नेटफ्लिक्स ने सिक्योर कर लिए हैं एक्सक्लूसिव स्ट्रीमिंग राइट्स टू 2030 फीफा वर्ल्ड कप इन स्पेन एंड अंडोरा। जी हाँ, जो कि होने वाला है स्पेन एंड अंडोरा में। आपको मैं बता दूं कि यहां पर नेटफ्लिक्स जो है वो लिटरली 104 मैचेस आपको दिखाने वाला है जो कि पूरे के पूरे टूर्नामेंट में होंगे। जी हाँ, और ये डील जो है इट्स अ मेजर मार्क एंड मेजर एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रीमिंग

पर मैच डे विल बी अवेलेबल फ्री इन स्पेन. जी हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि अब स्पेन क्योंकि होस्ट कर रहा है तो स्पेन के लिए एक डील है. वन मैच पर मैच डे विल बी अवेलेबल फ्री इन स्पेन एंड अ फ्री टू एयर ब्रॉडकास्टर विल कैरी एवरी स्पेन मैच बोथ सेमीफाइनल्स and the final, which is a great deal for Spain actually. जी हाँ, so yeah, अगर आप भी टेंशन में थे कि 2030 का फीफा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चलिए Netflix ने आपके लिए सब कुछ आसान कर दिया है, क्योंकि फिर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, देखना नहीं पड़ेगा कि कहाँ कहाँ आपसे देखें, because Netflix is a media giant और उसने प्रूव कर दिया है कि वो हर मामले से मीडिया जाइंट है. Now I'm not trying to, you know, advertise Netflix or anything, but yeah, it's a groundbreaking thing for Netflix and congratulations to them. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

जी दोस्तों, ऐसे के साथ अब वक्त हो गया है खबरों के बारे में बात करने का, यानी कि खबरों की तरफ रुख करने का। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मुंबई से, भारत से एक जगह मुंबई जहां से अच्छी खबर बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, नाला सुपारा इलाके में बहुमंजिला इमारत में लगी आग, कई लोगों को बचाया गया। जी हां, मुंबई के नाला सुपारा इलाके में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से इमारत में कई लोग फंस गए। इनमें एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हुई है। बसई विरार म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर पृथ्वीराज बीपी ने कहा कि बसई विरार महानगर पालिका में अचोले एरिया में इंपीरियल हाइट्स बिल्डिंग में रात करीब 11:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमारी टीम ने 15 से 20 लोगों को रेस्क्यू किया, कई लोग खुद से भी नीचे आए। पृथ्वीराज बीपी ने बताया कि इस हादसे में 60 साल की एक महिला की मौत की जानकारी मिली है। अभी उनका नाम और अन्य जानकारी जुटाई जा रही है और उसके बाद ही बाकी चीजों के बारे में बताया जा सकेगा।

0: Phone number carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships और ज्यादा जानकारी के लिए contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
3: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. Pehli baar Brisbane Nasinu honge QFFA family ka hissa, saath hi dekhne aa rahe hain Suva, Lambasa, Nandi, Lotoka, Ba, Tavua, Rewa, Nandroga and Ra. Khane mein hogi the famous butter chicken duck curry, pulao aur mouth watering Fiji style barbecue. Are are, hum ice blocks ko kaise bhul sakte hain? To aa jao maidan mein aur apni Fiji community ke saath games aur khane ka lutf uthao. Zyada jankari ke liye call karein Chairperson Lawrence on 0407-764-272 ya Secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir President Jitendra Prasad on 0402-422-777.
4: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
5: ਮੈਂ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਇਸ ਬਾਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਬੈਸਟ ਜੁਲਰੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪਹਿਨੂੰ, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
6: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
5: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
6: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlum and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ एक और खबर जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अमेरिका को दी चेतावनी, सेटकॉम ने दिया जवाब। जी हाँ, ईरान की IRGC नौसेना के कमांडर ने कहा है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अमेरिकी बेड़े का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमला कर उसे डुबा सके। IRGC ने दावा किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका नियंत्रण है। IRGC की इस चेतावनी के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि ईरानी नेवी कमांडर के पास नौसेना बची ही नहीं है। सेटकॉम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि अमेरिकी सेना और क्षेत्रीय सहयोग स्पष्ट तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखते हैं। कल ही अमेरिकी सेना ने खाड़ी के सहयोगी देशों के 1.9 करोड़ बैरल कच्चे तेल को हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए पास करवाया है। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, और इस हमले के बाद से अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष लगातार जारी है। इस संघर्ष में हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर खिंचतान सबसे अहम है, जो दुनिया भर में तेल और गैस की सप्लाई के लिए महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग माना जाता है।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है और मिस्टर ट्रंप ने भी कुछ कहा है। वेल, आप लोग बोलोगे वो हमेशा ही तो कहते रहते हैं कुछ नया, बताओ निविया शर्मा, बट ग्रीनलैंड को लेकर उन्होंने कुछ कहा है। आइए जरा जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर तेल, गैस और खनिजों की खोज जल्द शुरू होने वाली है। ट्रंप ने कहा कि कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यहां आसानी से उपलब्ध तेल की मात्रा दुनिया के लगभग किसी भी अन्य भूभाग से कहीं ज्यादा है। उन्होंने लिखा, से भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका और यूरोप दोनों की रक्षा और आक्रामक सैन्य कार्रवाई के लिहाज से इसका रणनीतिक महत्व बेजोड़ है। अमेरिका पर भविष्य में होने वाले किसी भी हमले को ग्रीनलैंड के रास्ते से गुजरना होगा। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड में हमारी रक्षा प्रणाली नियमित रूप से ड्रोन मिसाइलों या ऐसे किसी भी हथियार को मार गिराएगी जिसकी कल्पना तक अभी नहीं की गई थी। ये हमें समय, रणनीति, स्थिति और दूर तक देखने की क्षमता देता है जो दुनिया में कहीं और उपलब्ध नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फेडरिकसन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस फ्रेडरिक का नीलसन ने 22 सितंबर 2026 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान तीनों पक्षों के बीच सुरक्षा समझौते का हस्ताक्षर किया था। ट्रंप ने अपने भाषण में कहा था कि अमेरिका ग्रीनलैंड में दो बहुत बड़े सैन्य अड्डे बनाएगा। लालो मुबारकें भाई ग्रीनलैंड, आपको भी मुबारका। आई डोंट नो आप लोगों की रक्षा होगी या नहीं होगी, लेकिन आपके लिए मुसीबत जरूर आएगी, क्योंकि इमेजिन मिडल ईस्ट में जहां जहां अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं अमेरिका ने, वहां की दशा हम देख ही सकते हैं। जो यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस, विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ गजब की चीजें हो रही है, और यहाँ पर दृश्यम 3 ने तो एकदम चक दे फट्टे कर देता है। जी हाँ, आप लोग बोलोगे हैं चक दे फट्टे कर देता है, मतलब व्हाट डज इट मीन? वेल वेल वेल, दृश्यम 3 ने बता दिया है कि वो थ्रिलर्स की लाइन में सबसे आगे और सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर बन गई है। जी हाँ, सो आपको तो पता ही है कि ये मिस्ट्री और थ्रिलर आपको सर्व करती है, क्राइम भी सर्व करती है, बेसिकली क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर, ये है इसका जॉनर। और दृश्यम 3 जो है वो तीसरी मूवी है दृश्यम सीरीज की। पहली आई थी 2015 में, दूसरी आई थी 2022 में, और तीसरी यानी कि जो फाइनल, जो कंक्लूजन वाला पार्ट है वो है ये। लेकिन मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूं और चक दे फट्टे मैंने इसलिए कहा क्योंकि दृश्यम 3 ने लिटरली रिकॉर्ड्स तोड़ने का नाम और काम दोनों कर लिया है। जी हाँ, तो सबसे पहले तो अजय देवगन को बहुत ज्यादा बधाई, क्योंकि उनकी पहली फिल्म जो कि 500 करोड़ क्लब में पहुंच गई है। सो या ये पहली फिल्म है अजय देवगन की जो कि ऐसा कर पाई है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अजय देवगन। एंड ऑफ कोर्स अभिषेक पाठक, जिनकी ये बनाई गई मूवी है, जिन्होंने इसे बनाया है, और लिटरली ये 501 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसकी जो है वो हो गई है। मैं आपको बता दूं कि ये मूवी जो है वो सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी फिलहाल के लिए, अभी के लिए बन गई है 2026 की। मतलब धुरंधर द रिवेंज के बाद ऐसी कोई मूवी नहीं थी जो ये कारनामा कर पाई थी, लेकिन उसके बाद अब जो है सेकंड नंबर पर दृश्यम 3 जो है यहां पर आ गई है। बस एक ही मलाल की बात है कि दृश्यम 3 जो है वो फाइनल पार्ट है, मतलब दृश्यम सीरीज का एक और पार्ट नहीं आने वाला है, बस यहां पर ये एंड होने वाली है सीरीज, विच आई एम वेरी सैड अबाउट। बट अदर देन दैट ऑफकोर्स हमें स्टोरी मिल जाएगी, कंक्लूजन मिल जाएगा, वो एक अच्छी चीज है, बिकॉज हर बार हमें थोड़ी तो मिस्ट्री रह जाती थी हमारे दिमाग में कि ओ अब क्या होगा। बाय द वे, दृश्यम इज अबाउट अ पर्सन जिसका नाम है विजय सलगांवकर और उनकी फैमिली। जी हाँ, एक बंदा जब उनकी फैमिली के साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो अजय देवगन उनसे निपटते हैं, लेकिन वो निपटना उन्हें महंगा पड़ता है, क्योंकि उसके बाद ही इस मिस्ट्री की शुरुआत होती है। लोग प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ है अजय देवगन, कहते हैं कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो डेड बॉडी कहाँ है। वेल आई एम नॉट गोना स्पॉइल इट फॉर यू, बट आप देखिए जरूर, बिकॉज यू आर गोना लाइक इट। और अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो पहले इसके दो पार्ट्स देखिए और फिर दृश्यम 3 देखने जाइए, बिकॉज यू आर गोना लव इट, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जी हंसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है, और इसका नाम है तेरा दीदार हुआ। आई नो डोंट वरी, मैं गाने नहीं वाली हूँ, मुझे पता है मेरे गाने से पहले ही आप डर जाते हैं, सो ये गाना आप सबके लिए।

अरे भाई हमको नहीं करवाना दिल टोटे टोटे, हमारा दिल ऐसे ही ठीक है वन पीस में। जी हाँ, अब दोस्तों कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरी आंखों के सामने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जो मुझे हमेशा आपके साथ शेयर करना होता है। तो कल ही की बात है, सोशल मीडिया चलाते चलाते मेरे सामने एक मगरमच्छ आता है जिसने एक हुड पहना होता है और वो बड़े ही अच्छे से स्वैगी तरीके से रोल कर रहा होता है अपनी आईज को और साइड की तरफ देख रहा होता है, मतलब साइड आई दे रहा होता है आप कह सकते हो। और वहां पर लिखा होता है कि यस्टरडे आई डिसाइडेड टू स्टॉप Overthinking. जी हाँ, yesterday I decided to stop overthinking. Today I spent 3 hours thinking about how to stop overthinking. भाई बात तो सही है, मतलब अगर हम ऐसे सोचें भी ना कि क्या, मतलब ठीक है अब हम overthink नहीं किया करेंगे, बिल्कुल overthink नहीं करेंगे, तो अगले दिन हमको 3-4 घंटे यही सोचने में लग जाएंगे कि ओ पर overthink करना बंद कैसे करें, इसी के बारे में overthink करना पड़ जाएगा। सो तो वही वाली बात हो गई कि हम बादाम भिगोते हैं इसलिए ताकि हम हमारी याददाश्त स्ट्रांग हो जाए, लेकिन बादाम भिगो के बादाम खा के अगले दिन फिर से भूल जाते हैं कि हमें बादाम भी भिगोने हैं ताकि हमारी याददाश्त एकदम ठीक रहे। ये नेवर एंडिंग साइकिल जो है वो बड़ा खतरनाक है, ओवरथिंकिंग का भी यही हिसाब किताब है। और अगर आप लोग भी ओवरथिंक करते हो, कोई आपको कुछ भी कह देता हो, आप उसके बारे में सोचते रहते हो, आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते हो, तो आप भी सोचिए कि उसको सोचना आप कैसे बंद कर सकते हो। बिकॉज यू नो टू स्टॉप ओवर थिंकिंग यू नीड टू थिंक अबाउट हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग, राइट? ओके, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है भिड़ू।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: मेरे तुम्हारे सब के लिए दिवाली।
3: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड, और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026, सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
4: Hi, this is Amitabh Bachchan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
6: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
7: Hi, this is Salman Khan.
8: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
10: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
11: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
13: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
14: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
15: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill.

0: and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब वक्त हो गया है हमारे फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड का, तो आई होप आप उसके लिए रेडी हो क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गाने हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं। बट यू नो वॉट इज माई फेवरेट पार्ट, वेल ऑफ कोर्स कि वो सिर्फ गाने नहीं होंगे, वो गाने नए नहीं होंगे, वो पुराने होंगे। एंड व्हेन आई से पुराने, आई एम टॉकिंग अबाउट 50s, 60s, 70s, 80s, या वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। सो पुराने गाने, पुराने किस्से और ये सारे के सारे जज्बात लेकर हम आपके सामने आ गए हैं फिर से ओल्ड इज गोल्ड में। सो ये सेगमेंट शुरू हो रहा है। अगर आपके पास कोई फरमाइश है जो कि पुराने गानों से रिलेटेड है तो जल्दी से हमें भेज दीजिए। और जो पहला गाना हम आपके लिए प्ले करने वाले हैं इस सेगमेंट में वो बहुत ही खूबसूरत है और लता जी की आवाज में, विच इज अनदर कूल फैक्ट अबाउट द सॉन्ग, एंड द सॉन्ग नेम इज आजा आई बहार। आई नो राइट, मतलब ऑफ कोर्स हमारा सेगमेंट शुरू हो गया तो वो बहार के साथ शुरू हो, उससे अच्छा क्या ही हो सकता है, राइट right?

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ एक बहुत ही दिलचस्प चीज है जो कि राजेश खन्ना को काका और आका दोनों बनाती है। मतलब ऊपर आका नीचे काका, ये राजेश खन्ना के बारे में कहा जाता है। जी हाँ, लेकिन आपको शायद नहीं पता होगा कि राजेश खन्ना जो है वो अपने घर में काफी लाड दुलार से बड़े हुए थे। मतलब उनके घर में उन्हें कोई डांटता नहीं था, ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल उनके घर पे नहीं था, स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं थी, घर वाले बहुत ज्यादा प्यार करते थे और यही वजह थी कि बहुत ही अच्छे से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। लेकिन एक किस्सा हुआ। जी हाँ, वो एक दिन दफ्तर में जाके अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गए। जी हाँ, अपने पिता की कुर्सी पर बैठ गए वो, और वो गए हुए थे अपने पिता के दफ्तर किसी वजह से, और छोटे थे तो उन्हें लगा कि पापा के दफ्तर में जाके पापा की कुर्सी पर तो बैठा ही जा सकता है। लेकिन वहां पर किसी ने उन्हें कहा कि ऐसे किसी की कुर्सी पर बैठा नहीं करते। जी हाँ, अब ये सुनने के बाद राजेश खन्ना, जिनको कभी से पहले किसी ने कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें कोई भी कुछ नहीं बोलता था, हमेशा सब उनसे प्यार करते थे, काफी लाड़ दुलार से वो बड़े हुए थे, उनके जहन पर इसका बहुत ज्यादा असर हुआ। इनफैक्ट उस इंसिडेंट के बाद वो बहुत ज्यादा रोए भी, लेकिन फिर ये सीख उनके काम आई। क्यों? आई एम गोना टेल यू अबाउट दैट। लेकिन पहले मैं आपको सुनाऊंगी एक और खूबसूरत सा गाना, और इसका नाम है दिल पुकारे आरे आरे।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
2: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
1: अरे वाह, इनका पता बताना।
2: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
3: दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरशे निविया के साथ। दोस्तों, हम आपको सुना रहे हैं किस्सा काका का, यानी कि जतिन खन्ना का। और अगर आपको नहीं पता है कि जतिन खन्ना कौन है तो मैं आपको बता दूं, क्या आप उन्हें राजेश खन्ना के नाम से जानते हैं? जी हाँ। सो राजेश खन्ना के बचपन का ये किस्सा है, जब वो 10 साल के हुआ करते थे। जी हाँ। और एक दिन वो अपने पिता के ऑफिस में गए थे और उनके पिता किसी मीटिंग में व्यस्त थे लोगों के साथ, वर्कर्स के साथ, और इस वजह से वहाँ पर वो अपने पिता के ऑफिस में जाकर उनकी सीट पर बैठ जाते हैं और कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके मामा के तलवार वहाँ पर आते हैं और वो राजेश खन्ना को कहते हैं कि काका, ये तुम कहाँ बैठे हुए हो? तो राजेश खन्ना उनको देखकर ऐसे आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि क्या मतलब, क्या बात, मतलब क्या है इस बात का कि तुम कहाँ बैठे हो? वेल ऑफ कोर्स, मैं सीट पे बैठा हूँ अपने पिता के। तो सामने से उनके मामा के तलवार उनसे कहते हैं कि बैठने से पहले ये देख लो कि क्या तुम उस लायक भी हो, क्या तुमने अपने आप को लायक बनाया है उस सीट पर बैठने के। ये सुनते ही राजेश खन्ना इमोशनल हो जाते हैं, उन्हें इतना बुरा लगता है ये सुनकर, और वो वहां से जल्दी से भाग जाते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। जी हाँ। और वहां पर जाकर अपनी माँ से, जो कि लीलावती खन्ना थी, उनसे जाकर पूछते हैं कि क्यों मामा ने मुझे ऐसा क्यों कहा, मतलब ऐसा कहने की वजह क्या थी, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया था? तो राजेश खन्ना की माँ लीलावती खन्ना उन्हें बताती हैं कि तुम्हारे मामा ने ये इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे पिता ने जो भी अचीव किया है वो उन्हें ऐसे ही इजीली नहीं मिल गया। जतिन, तुम्हारे पिता ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। स्टार्टिंग में वो एक मील में सुपरवाइजर की तरह काम किया करते थे, उसके बाद उन्होंने रेलवे के कॉन्ट्रैक्ट लेने शुरू किए, वो रेलवे कॉन्ट्रैक्टर बने और फिर फाइनली उन्होंने अपने कारोबार को शुरू किया। ये सब उन्हें ऐसे ही नहीं मिल गया है, उन्होंने इसे कमाने के लिए बहुत मेहनत की है। और ये वजह थी कि तुम्हारे मामा ने कहा कि जिस सीट पर तुम बैठे हो, जो कि तुम्हारे पिता की सीट है, जिस सीट पर तुम बैठे हो, क्या तुमने अपने आप को लायक बनाया है उस सीट पर बैठने के। राजेश खन्ना ने लिटरली इस चीज को अपने जहन में बिठा लिया। ही वॉज लाइक कि ओके, फाइनली आई नो कि मामा जी ने मुझसे ऐसे क्यों बात की, क्योंकि उससे पहले राजेश खन्ना से कभी किसी ने ऐसे बात ही नहीं की, क्योंकि वो बहुत ही लाड दुलार में बड़े हुए थे। उसके बाद राजेश खन्ना कभी किसी की कुर्सी पर ऐसे ही नहीं बैठे, लेकिन फाइनली उन्होंने अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में, अपने सक्सेस से ऐसी कुर्सी बना ली जिस पर बैठ पाना किसी भी और स्टार के लिए मुश्किल था। मतलब वो सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं हिंदी फिल्म जगत के आज भी। सो यू कैन इमेजिन कि उन्होंने भी अपने पिता की तरह बहुत अच्छा नाम तो कमाया, लेकिन साथ में अपने लिए वो कुर्सी का इंतजाम भी किया जिस पर कोई ऐसे ही नहीं बैठ सकता था। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन खूबसूरत है काफी।
4: जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब शस्त्र देना। डन
5: कैन
4: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है?
5: है?
4: मैंने पूछा बागों में बाहर है?
5: है।
4: गर्मियों की निहार है?
5: है।
4: तो तुमको मुझसे प्यार है?
5: ना, ना, ना।

0: है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: दोस्तों बाय द वे, आपको पता नहीं हो शायद, या शायद आपको पता भी हो कि सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है ये गाना आजकल। सो अगेन राजेश खन्ना की बात हो रही थी, उन्हीं की मूवी का गाना हमने प्ले कर दिया और अब हम एक फरमाइशी गीत प्ले करने वाले हैं जो कि है एक बहुत ही खूबसूरत फरमाइश एक दोस्त के लिए अपनी दूसरी दोस्त की तरफ से। जी हाँ, ये फरमाइश है हिना जी की तरफ से निमी जी के लिए, क्योंकि निमी जी का आज जन्मदिन है। तो सबसे पहले निमी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद हमारी रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से एंड हिना जी की तरफ से। हम यही कहेंगे कि आज आपका दिन जो है वो बहुत ही खूबसूरत रहे, खुशियों से भरा रहे और ये साल भी आपके लिए खुशियों से भरा रहे। आप हेल्दी रहें, वेल्दी भी आप बने, यही हमारी कामना है, यही हमारी दुआ है। एंड हिना जी की तरफ से जो फरमाइश आपके लिए आई है वो भी बहुत ज़्यादा खास है। एंड यू नो व्हाट, दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। सो गाना जो उन्होंने आपके लिए फरमाइश किया है वो है हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। वाह वाह वाह, क्या बात है। सो जी हाँ, हिना जी की तरफ से निमी जी आपके लिए फरमाइश आ गई है हमें तुमसे प्यार कितना। अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। एंड दोस्तों इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त भी हो गया है, जा रहे हैं हम, वापस आएंगे कल। तो आपको क्या करना है, मजे करने हैं, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है और सुनते रहना है रेडियो ब्रिस्वानी को। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवीं क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks, Atanya. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो उमसॉग से बात कर. इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल. खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी.

बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, रैफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ टू किड्स अंडर 16 ईयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156, आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल पास ही है।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथोराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन का विक्टोरिया ब्रिज नीली रोशनी से चमका। नेशनल केयरर्स वीक के मौके पर आज रात ब्रिस्बेन का ऐतिहासिक विक्टोरिया ब्रिज खास नीली रोशनी से जगमगाएगा। ये पहल 29 लाख से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के सम्मान में की जा रही है, जो बिना किसी स्वार्थ के अपने परिजनों की देखभाल करते हैं। वहीं बोल्ट टू ब्रिस्बेन 2026 टेनिस प्रतियोगिता की उल्टी गिनती शुरू। क्वींसलैंड के उभरते हुए जूनियर टेनिस खिलाड़ियों के लिए बोल्ट टू ब्रिस्बेन 2026 टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया है। क्वींसलैंड टेनिस सेंटर में होने वाले स्टेट फाइनल्स के लिए अलग अलग रीजन्स की टीमें चुनी जा रही हैं। वहीं ब्रिस्बेन के बच्चों की अनूठी पहल काइंडनेस ट्रेजर हंट। ब्रिस्बेन शहर में बच्चों द्वारा एक अनोखा काइंडनेस ट्रेजर हंट इवेंट आयोजित किया जा रहा है। इसमें लगभग 250 बच्चे हिस्सा लेंगे, जो शहर के पुलिसकर्मियों, फायर फाइटर्स और अस्पताल के डॉक्टरों को हाथों से बने धन्यवाद कार्ड और उपहार सौंपकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। इसी के साथ वॉल्टर टेलर ब्रिज पर रात का ट्रैफिक बंद। इंडोरोपिली और चेलमर की जोड़ने वाली वॉल्टर टेलर ब्रिज पर रखरखाव और मरम्मत का काम चल रहा है। इसके चलते रात 9 बजे के बाद ब्रिज पर गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। स्थानीय प्रशासन ने वाहन चालकों को वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इसी के साथ शॉपिंग सेंटर के अंदर खुला पहला कार डीलरशिप। ब्रिस्बेन के प्रमुख शॉपिंग सेंटर के अंदर मशहूर कार ब्रांड शेरी ने अपना 100वां ऑस्ट्रेलियाई डीलरशिप शोरूम खोला है। शॉपिंग के साथ साथ कार खरीदने और टेस्ट ड्राइव का यह अनूठा अनुभव ब्रिस्बेन निवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। वहीं साउथ ब्रिस्बेन में पुलिस ने जारी की सड़क सुरक्षा चेतावनी। साउथ ब्रिस्बेन में हाल ही में हुए एक हिट एंड रन मामले के बाद क्वींसलैंड पुलिस ने पूरे शहर में स्पीड इन्फोर्समेंट और चेकिंग बढ़ा दी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे सड़कों पर सावधानी बरतें और किसी भी संदिग्ध गाड़ी की जानकारी तुरंत हेल्पलाइन पर दें। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले IMF ने बढ़ाया भारत की ग्रोथ का अनुमान। जी हां, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत की आर्थिक तरक्की को लेकर बड़ा अनुमान जताया है। IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को बढ़ाकर 7% कर दिया है। इससे पहले यह अनुमान 6.4% था। वहीं दिल्ली में बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली बैठक। राजधानी नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक देशों के गृह मंत्रियों की पहली ऐतिहासिक बैठक आयोजित हो रही है। इस बैठक में बंगाल की खाड़ी के आसपास से 7 सदस्य देश हिस्सा ले रहे हैं। बातचीत का मुख्य मकसद आतंकवाद, साइबर क्राइम और मानव तस्करी जैसी बड़ी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत करना है। वहीं UPI पर व्यापारी शुल्क का फैसला अब दिवाली के बाद। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने डिजिटल पेमेंट से जुड़ा एक बड़ा ऐलान किया है। 2000 रुपए से अधिक के UPI पेमेंट्स पर लगने वाले प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट को अब दिवाली के बाद लागू किया जाएगा। वहीं शेयर बाजार में बढ़त, IT सेक्टर चमका। जी हाँ, भारतीय शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी में सुबह के कारोबार के दौरान लगभग 0.9% की बढ़त दर्ज की गई। IT कंपनी HCL टेक के मजबूत तिमाही नतीजों और वैश्विक बाजारों से मिले अच्छे संकेतों की वजह से निवेशकों का भरोसा काफी बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ सरस मेला 2026। विजयवाड़ा में राष्ट्रीय स्तर के सरस मेले 2026 की शुरुआत हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित इस मेले में देश भर के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं अपने हस्तशिल्प और लोकल प्रोडक्ट्स को प्रदर्शित कर रही हैं। इसी के साथ देश भर में वोटर लिस्ट अपडेट करने का अभियान शुरू। चुनाव आयोग ने पूरे देश में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसके तहत नए मतदाताओं का नाम जोड़ने और पुराने डेटा को सही करने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले नेपाल में भारी बारिश से सैकड़ों विदेशी पर्यटक फंसे। सेंट्रल नेपाल में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 100 से अधिक विदेशी ट्रैकिंग यात्री फंस गए हैं। कई जगहों पर पैदल रास्ते और पुल बह गए हैं। वहीं मिडल ईस्ट में तनाव बढ़ा, यमन में एयर स्ट्राइक। मिडल ईस्ट में हालात एक बार फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। सऊदी अरब नीत गठबंधन ने यमन की राजधानी साना में हवाई हमले किए हैं। इससे ठीक पहले हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के ठिकानों पर मिसाइल दागने की खबरें आई थी। वहीं चीन के निर्यात में 36% से ज्यादा का उछाल। सितंबर महीने में चीन के निर्यात आंकड़ों में उम्मीद से कहीं ज्यादा उछाल देखने को मिला है। आंकड़ों के मुताबिक चीन का एक्सपोर्ट 36.3% बढ़ा है, जिसने आर्थिक विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। इसे ग्लोबल ट्रेड में चीन की वापसी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नासा के रोवर परसिवरेंस ने बनाया नया रिकॉर्ड। अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया से बड़ी खबर आ रही है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का परसिवरेंस रोवर मंगल ग्रह की सतह पर 45.2 किलोमीटर की दूरी तय करके पृथ्वी के बाहर सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाला पहला रोवर बन गया है। वहीं अमेरिका में शरणार्थियों के नियम हुए सख्त। जी हाँ, अमेरिकी प्रशासन ने रेफ्यूजीज के लिए अपने नियमों में बदलाव का फैसला किया है। नए आदेश के तहत अपना शरणार्थी दर्जा खत्म होने पर फैसले को चुनौती देने की समय सीमा को 30 दिन से घटाकर सिर्फ 10 दिन कर दिया गया है। वहीं गेटी इमेजेस की बैंकरप्सी की योजना। प्रसिद्ध विजुअल मीडिया कंपनी गेटी इमेजेस ने अपने भारी कर्ज को कम करने और कंपनी को दोबारा प्राइवेट करने के लिए अमेरिका में चैप्टर 11 बैंकरप्सी प्रक्रिया शुरू करने का फैसला किया है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले शुभमन गिल और शेफाली वर्मा बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर है। आईसीसी ने सितंबर 2026 के लिए शुभमन गिल को मेंस और शेफाली वर्मा को वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। वहीं वर्ल्ड स्केट्स गेम्स में भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला। इसी के साथ डेनमार्क ओपन में सिंधु और लक्ष्य सेन की चुनौती शुरू। डेनमार्क ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के स्टार्स शटलर्स पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन अपने अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। वहीं अफगानिस्तान और बांग्लादेश का टेस्ट रहा ड्रॉ। क्रैम्प विवाद। अबुधाबी में खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ मैच को रोमांचक तरीके से ड्रॉ कर लिया। मैच के अंतिम क्षणों में अफगान बल्लेबाज कैस अहमद को आए तेज क्रैम्प के कारण खेल में थोड़ी देर रुकावट आई, जिसने मैदान पर पुराना विवाद ताजा कर दिया। इसी के साथ रोनाल्डो का 1000 गोल का सफर जारी। दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने करियर के 1000वें गोल की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। उनकी टीम ने हालिया मुकाबले में नेफ्थची को 3-1 से हराया, जिसमें रोनाल्डो ने करियर का 981वां ऑफिशियल गोल दागा। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वान।
1: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। जाएगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन. एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम.
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना.
2: Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
4: Vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ. अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो. होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा.
5: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों. श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला. सैटरडे 24th October 2026 फ्रॉम 4 PM. $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री. वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117. एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी. और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ. लाइट.
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं. आई एम सो कंफ्यूज्ड.
7: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं. दे आर इन बिजनेस सिंस 1992. यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस. साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है.
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109. फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365. दैट्स 3273-7365. और ईमेल प्रिंस ज्वेलर्स @bigpond.com. फैमिली.

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: wedding suits and accessories, top quality designer saris, lehengas, salwar kameez, party wear and men's shirts and suits. You can also order tailor-made suits from Rani Creations. Itna hi nahi, original DVDs, CDs, phone cards, prepaid charge cards, fancy jewelry, bangles, giftware bhi uplabdh hai. For top quality Bollywood fashions, visit Rani Creations at 33 Balclava Street, Woolen Gabba, open daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
1: चलो चलो दीपावली आ गई है. शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉर्टन बे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट. सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन. ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट. होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी. टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ टू किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री. ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट निलमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं. आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं. दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है,
5: मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
4: अच्छा वो क्या?
5: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा?
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani पे।
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Rayali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.

0: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जीतेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असीं तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी कि 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण का राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।

कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेंबर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार. हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं.
3: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से.
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है.
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो.
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी.
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है. भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801. प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई.
4: ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानी स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। यह तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो, बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

हेलो वेलकम आदाब जी सत श्रीकाल जी। तुसी बने होए जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसी दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज़्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है मेरी पसंद है सब दी पसंद है रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी। bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगदा है अपनाओ पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: It's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल तुसी बने हुए हो। देखो, सब तो पहला गल करते हैं फिल्म दे बजट की। देखो, किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा है। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल हुंदे ने, जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा, प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट्स, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च हुंदा हुंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय हुंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पर पहले गी सुणो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइफ। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156, आई रिपीट 0405409156, या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
5: Priya, next month mama ka birthday hai. Soch rahi hu unko foreign exchange ke through New Zealand money bhej do jisse wo apni pasand ka gift le lenge. Ye to bahut acha idea hai. Mere paas ek acha option bhi hai money transfer karne ka.
6: Acha? Wo kya?
5: Ab tum ghar baithe New Zealand ya Fiji mein bhi money bhej sakti ho Lotus foreign exchange ki help se online aur wo bhi free mein.
6: Lekin mama ke liye money lene kahin dur jana possible नहीं होगा।
5: अरे रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

जी वेलकम बैक, जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसवानी 101 एम जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। इस तो बाद हुण आपां गल करदे आं नॉन थ्रेटिकल कमाई की। अजकल फिल्मां रिलीज होने तो पहला ही पैसा कमा लैंदियां ने, एक प्रॉफिट राइट्स बेच के मिलता है जिवें सैटेलाइट राइट्स, इस जो चैनल से राइट्स लैंदे ने या वो मूवी दिखाते रहते हैं, डिजिटल राइट्स ओटीटी प्लेटफॉर्म मूवी बेची जाती है, म्यूजिकल राइट्स गाने तो कमाई होंगी है। फिर होंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट, देखो कई बार फिल्म ना बॉक्स ऑफिस से कमाई के मामले में एवरेज होंगी है पर इन राइट्स की वजह न प्रोड्यूसर मुनाफा कमा लेंगे ने, पर मूवी के हिट फ्लॉप या एवरेज होने का वर्डिक्ट बॉक्स ऑफिस कमाई के हिसाब न ही तय होंगे है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है. ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ. ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ. ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ.
11: ਓ,

0: renting and thinking about owning one, or maybe an investor looking to invest. Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. Now is the
1: time for all to see that. Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। हुण जिहड़ी मैं वर्ड की गल कर रही हूँ, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी कम पर कम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ ते दम ते फिल्म रफ्तार फड़दी है ते फाइनली बॉक्स ऑफिस ते ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

उम्मीद है कि थानू ये सब कुछ जरूर समझ आ गया होना है ना, जरूर समझ आ गया होना, क्योंकि जेड़े बॉलीवुड लवर है कि बॉलीवुड नहीं मूवी लवर्स है कि बेशक कोई भी बॉलीवुड दी देखते हो, टॉलीवुड दी देखते हो, हॉलीवुड दी देखते हो, साउथ दी देखते हो, उन्होंने ये पॉइंट्स इंटरेस्टिंग लगते होंगे या नहीं तो थोड़ा जरूर वधिया लगे होने हैं। तुसी बाकी जरूर दसो सानू कि थोड़ा किस तरह की जानकारी तुसी चाहते है। क्यों रेडियो बिसवानी वनसन वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो बिसवानी एट बिसवानी डॉट कॉम साथ ईमेल आई डी है, सरिया जेड़ा भी अपनाना चाहते हो अपनाओ, साडा गलबात जरूर करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen सब्जी from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Now is the time for all to see. Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा. साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्सॉर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers.

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रे अली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Ray Ali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं? तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ, ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: क्वींसलैंड की नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हाँ अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हाँ। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हाँ। नाल ही 2032 अते उस तो भी अगे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नैशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अगे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम्स फ्रंट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेसअप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइसेज आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
1: यार सब ठीक है बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस मेडांटा सीके बिरला आर्टेमिस सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
2: बिल्कुल ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए ओम्स ऑर्ग स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: अमीरों की शादी है तो फंक्शनों की कमी नहीं होगी। वेलकम टू देसी सन डाउनर विथ रंग।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.

0: बेटा? सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो?
1: करिश्मा बुलाने जा रहा हूँ।
0: बहू को? अभी दो दिन तो हुए उससे मायके गए हुए।
1: दो दिन दो साल जैसा नहीं लग रहा। और बारिश भी आने वाली है।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 AM. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

0: चलो चलो दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉरपोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना रंगोली कॉम्पिटिशन वेजिटेरियन क्यूजीन किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड $50 पर फैमिली जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405-409-156 आई रिपीट 0405-409-156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 Saturday 24th October 2026 event proudly supported by the city of Moreton Bay.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-435 पर या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

पहचान हो, जीना आसान हो, जान पहचान हो, जीना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: Hi, this is Amitabh Bachchan.
3: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
5: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
9: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
11: हम दिल के बुरे नहीं, बस एक खराबी है, आदत से नहीं।

Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NIL Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा, साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन, डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious Nil Tech QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा। साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा। खाने में होगी द फेमस बटर चिकन डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू। अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं। तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 ya secretary Rayali on 0413-868-240 ya phir president Jitendra Prasad on 0402-422-777।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: Now is the time for all to see. Hello friends, Queensland Fiji Football Association's prestigious NILTEC QIDC 2026 hone ja raha hai from Wednesday 21st October to Sunday 25th October at the prestigious Olympic Football Club. पहली बार ब्रिस्बेन नसीनू होंगे QFFA फैमिली का हिस्सा. साथ ही देखने आ रहे हैं सुवा, लंबासा, नैंडी, लोटोका, बा, टावुआ, रेवा, नांड्रोगा एंड रा. खाने में होगी द फेमस बटर चिकन, डक करी, पुलाव और माउथ वाटरिंग फिजी स्टाइल बारबेक्यू. अरे अरे, हम आइस ब्लॉक्स को कैसे भूल सकते हैं. तो आ जाओ मैदान में और अपनी फिजी कम्युनिटी के साथ गेम्स और खाने का लुत्फ उठाओ. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें चेयरपर्सन लॉरेंस on 0407-764-272 या सेक्रेटरी रेयाली on 0413-868-240 या फिर प्रेसिडेंट जितेंद्र प्रसाद on 0402-422-777.

जीवन भक्ति शक्ति और कर्मों का संगम है ये जीवन। इस जीवन को समझना बहुत ही मुश्किल है, अनेक तरह की कठिनाइयों से भरा पड़ा है ये जीवन और अनेक तरह की पहलियों से उलझा भी पड़ा है। और इस जीवन में उलझ उलझ कर हम कब अपनी लीला ही खत्म कर लेते हैं हमें समझ नहीं आता। ये भागता हुआ जीवन हमें कब अंतिम पड़ाव पर पहुंचा देता है हम समझ नहीं पाते और हमें लगता है कि हम तो जीवन को जान और समझ ही नहीं पाए। तो चलिए आज एक छोटी सी कोशिश फिर से करते हैं, जीवन आधार के जरिए अपने जीवन को, अपने जीवन की समस्याओं को और जीवन मरण के इस बंधन को जानने और समझने की। धरती यानी कि हम मनुष्यों और आकाश यानी उस ऊपर वाले के बीच की दूरी को भरने की एक कोशिश करते हैं जीवन आधार में। और शुरुआत करते हैं इस अगले गीत के साथ। रहिए सताक्षी के साथ और सुनते रहिए जीवन आधार सिर्फ और सिर्फ रेडियो ब्रिस्वानी।

जीवन की बारीकियों को सिखाता हमारा खास सफर जीवन आधार। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 पर श्रोताओं, और आपके साथ सताक्षी इस सफर में है और हम कई खूबसूरत गानों के साथ इस सफर को सजाने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार मनुष्य जब अकेला होता है तो बहुत विचलित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि कहते हैं ना कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसे लोगों का साथ, लोगों की भीड़ बहुत पसंद आती है। लेकिन अगर अध्यात्म की ओर जाइए तो अध्यात्म ये कहता है कि अकेला होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हैं आपका अकेलापन आपको ये सिखाता है कि वास्तव में आपके पास आपके अलावा और कुछ भी नहीं है। इस दुनिया में जब आप आए थे तो बिल्कुल तन्हा आए थे, और इस दुनिया से जब आप जाएंगे, आपके पास नौकरी हो अच्छी, अच्छा करियर हो, अच्छा बिजनेस हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन कुछ भी आपके साथ नहीं जाता है। यहाँ तक कि आपका शरीर भी आपके साथ नहीं जाता है जिसमें आप जी रहे हैं, जिसके अंदर आप रह रहे हैं। बहुत गहरी बात है और इस बात को समझने में ही हमारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। आइए शायद हम थोड़ा बहुत समझ पाए हो इस बात को, और इसी बात के साथ आगे बढ़ते हैं अगले गीत के साथ भी। अभी सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी आपके साथ।

0: रेडियो ब्रिस्वानी पर आप सुन रहे हैं जीवन आधार। जी हाँ, ये सफर जो है ये आपकी हमारे जीवन को ही हमें समझा रहा है, हमें बता रहा है, और इसी सफर के साथ हम और आप आगे चल रहे हैं। कुछ और गीत इतने खूबसूरत हैं जो जिंदगी से हमें भर देते हैं और जिंदगी से मिलवा भी देते हैं, उस ऊपर वाले से कुछ गीत हमें मिलवा देते हैं। एक ऐसे ही गीत को भी आपके लिए यहाँ पर प्ले करने जा रही हूँ, इसे सुनिएगा और सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।
1: एक दिन

मुझे ना श्रीमद् भगवत गीता बहुत पसंद है, क्योंकि कहते हैं और मैंने ये देखा भी है कि श्रीमद् भगवत गीता में आपके हर सवाल का जवाब है। इसी में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई भी जिंदगी की समस्या हो ना, उसके 3 समाधान हैं। आप इस बात को बहुत आजमा के देख लीजिए, चाहे तो आपकी किसी भी समस्या के सिर्फ और सिर्फ 3 समाधान हैं। या तो आप उस समस्या के साथ सब्र कीजिए, आप पेशेंस रख लीजिए। अगर आप उस सिचुएशन को, जिंदगी की उस प्रॉब्लम को, उस परेशानी को, उस समस्या को बदल सकते हैं तो आप बदल दीजिए, और या फिर उसे छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दीजिए वक्त पर, क्योंकि वक्त कई सारी चीजों को ठीक कर देता है। और इसके अलावा चौथा समाधान आपकी सिचुएशन का और कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखिए आप अपनी प्रॉब्लम्स पर ये 3 चीज अप्लाई करके कि आप इनमें कौन सी चीज अपनी उस सिचुएशन में, अपनी उस प्रॉब्लम में अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप निकल सकते हैं या उसको आप ठीक कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं हम अभी जीवन आधार में इस अगले गीत के साथ। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701।

रेडियो प्रस्वानी पर जीवन का ये साथ है, ये सफर है जीवन आधार का, जिसमें आप एक बार फिर से सताक्षी के साथ आ जाएं और हम और आप मिलकर अपने जीवन को जानने की एक बहुत ही बेहतरीन सी कोशिश इस सफर में कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे इस अगले गीत के साथ। हमारे साथ सुनते रहिए जीवन आधार, सिर्फ और सिर्फ रेडियो प्रस्वानी पर।

आपका कद नहीं, आपकी विनम्रता आपको बड़ा बनाती है। एक बार फिर से सताक्षी करती है आपका स्वागत रेडियो प्रसवानी पर श्रोताओं। और कद से मतलब यहाँ आपकी हाइट से नहीं है, कद से यहाँ मतलब है श्रोताओं आपकी पोजीशन से। आप कितने भी ऊंचे बन जाएं, आप कितने भी बड़े बन जाएं, लेकिन वो दोहा तो आपने सुना ही होगा, बड़ा भया तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी अगर आप बड़े हैं और आपका बड़ा होना किसी के भी काम नहीं आ रहा है, आपका ऊंचा चरित्र किसी के भी काम नहीं आ रहा है, तो आपका बड़ा होना व्यर्थ है। बड़प्पन असल में दूसरों को खुशियां देने में, दूसरों की जरूरत पूरा करने में है। आप किसी भी पोजीशन पर हो, अपने हिसाब से अगर आप दूसरों को खुशियां दे पाते हैं, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला पाते हैं या उनके लिए कुछ भी कर पाते हैं, तभी आपके बड़े होने का मतलब है। इसलिए ही कहते हैं कि हमेशा विनम्र रहिए, क्योंकि हम कई बार आपसे कह चुके हैं जीवन आधार में कि आपके साथ आपकी पोजीशन नहीं जाने वाली। अगर कुछ जाएगा यहां से तो सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म ही जाएंगे। उन्हीं कर्मों के नाम है ये अगला गीत। सुनिए और सुनते रहिए सताक्षी के साथ जीवन।

जीवन आधार में अपने जीवन को, अपनी संपत्ति को, अपने कर्मों को जानने की एक कोशिश आज आप फिर से कर रहे हैं मेरे साथ, और इस कोशिश में कुछ रंग भर रहे हैं हमारे ऐसे गाने जो जीवन भक्ति और साधना से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक गीत के साथ आगे बढ़ेंगे, अभी सुनते रहिए हमारे साथ जीवन आधार।

दोस्तों कहते हैं आप जब इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो कुछ आपको बातें जीवन की आपका परिवार सिखाता है, आपके माता पिता सिखाते हैं, कुछ आपको स्कूल कॉलेज की डिग्रीज सिखाती हैं, लेकिन जीवन के सही पथ को जानने के लिए, अपनी समझ को विकसित करने के लिए आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में एक गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि गुरु ही है जो आपको सही मार्ग दिखा पाता है आपके जीवन का, आपको कैसे चलना है जीवन के पथ पर ये बता पाता है। अगर गुरु नहीं होगा तो आपकी समझ कभी विकसित नहीं हो पाएगी। हमारी समझ तो उतनी ही है ना कि अगर हमें जानवर कहा जाए तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन अगर हमें शेर कह दिया जाए तो हम खुश हो जाते हैं, है ना। लेकिन देखा जाए तो इन दोनों में क्या ही अलग है, दोनों ही तो सिमिलर है। इसी ज्ञान को विकसित करने के लिए गुरु अत्यंत आवश्यक है, और इसीलिए गुरु को प्रभु से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। उसी गुरु की वंदना करते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रजवाणी और रहिए सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन का हमारा आपका बेहतरीन सा साथ जीवन आधार में। आई होप कि आपने आज इस सफर को एक बार फिर से जरूर सुना होगा और आपको अच्छा लगा होगा। जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के साथ और कुछ खास नगमों के साथ कल इसी सफर में आपके साथ शताक्षी की होगी फिर से एक और मुलाकात। हम और आप साथ साथ अपने कर्मों को, अपने जीवन को और जीवन के आधार को जानने की और समझने की करेंगे कोशिश। आज के सफर से दीजिए इजाजत। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, गुड मॉर्निंग क्वींसलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हर उस कोने में गुड मॉर्निंग जहां हमारे लिसनर्स अपनी नई सुबह का भाई वेलकम कर रहे हैं। ओए होए भाई, उठ गए हैं मेरे सारे लिसनर्स, या अभी भी रजाई के साथ इमोशनल अटैचमेंट चल रहा है भाई? बताइए बताइए, कोई बात नहीं, रजाई को बोलो डार्लिंग, मिलते हैं फिर आज रात, क्योंकि अब वक्त है भाई उठने का, मुस्कुराने का और अपने दिन को ना एकदम जबरदस्त बनाने का। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजी चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन में प्रोग्राम चांदनी का सफर। आज थर्सडे है और थर्सडे का मतलब है भाई वीकेंड की तरफ एक और कदम। जी हाँ, लेकिन एक बात बताइए भाई, वीकेंड का वेट करते करते कहीं हम अपनी मंडे से फ्राइडे वाली जिंदगी जीना तो नहीं भूल गए हैं? हर दिन स्पेशल हो सकता है दोस्तों, बस उसको देखने का नजरिया जो है वो स्पेशल होना जरूरी है। चलिए एक इंटरेस्टिंग सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर आज सुबह आपको अपनी लाइफ में एक चीज इंस्टेंटली चेंज करने का मौका मिल जाए तो आप क्या चेंज करेंगे भाई? अपनी जॉब, अपना बैंक बैलेंस, अपनी स्लीप टाइमिंग या फिर अपनी लाइफ में किसी एक इंसान का बिहेवियर? और मुझे लगता है ना ऑप्शन बी के स्पोर्टर्स जो है इस वक्त सबसे ज्यादा है। बैंक बैलेंस बढ़ जाए तो अलार्म भी वही प्यारा लगने लगता है। लेकिन सीरियसली दोस्तों, अपना आंसर जरूर सोचिए। आज के शो में हम बात करेंगे ब्रिस्बेन के अपडेट्स की, इंडिया की न्यूज की, बॉलीवुड की फिल्में तड़के की और कुछ ऐसी बातें, जी हाँ, जो आपके चेहरे पर भाई स्माइल ला दे। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की इस प्यारे से गीत के साथ। ऑन

वेरी वेरी वेलकम बैक ब्रिस्बेन। जी हाँ, तो चलिए बात करते हैं ब्रिस्बेन और क्वींसलैंड की कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। सबसे पहले बात उन ड्राइवर्स की जो गाड़ी में भाई पेट्रोल भरवाते वक्त पहले प्राइस देखते हैं और फिर फ्यूल टैंक। लेटेस्ट एबीसी रिपोर्टिंग के मुताबिक ब्रिस्बेन में अनलीडेड पेट्रोल का जो एवरेज प्राइस है वो 199.2 सेंट्स पर लीटर रिपोर्ट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर्स के एवरेज से 10.6 सेंट्स ज्यादा था। डीजल का एवरेज जो है वो 242 सेंट्स पर लीटर रिपोर्ट हुआ है। और अब ड्राइवर्स के लिए भी मैसेज सिंपल सा है, पेट्रोल भरवाने से पहले भी डिफरेंट स्टेशंस के प्राइसेस कंपेयर करना यूजफुल हो सकता है। और अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो भाई पॉसिबल हो तो कार पूलिंग या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये रिपोर्टेड फिगर्स है भाई, आज के एक्सपेक्ट पंप प्राइस अलग हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

इसी के साथ आइए बात करते हैं भाई क्वींसलैंड के वर्क प्लेसेस की। जी हाँ, एबीसी की 14th ऑफ अक्टूबर की रिपोर्ट के मुताबिक क्वींसलैंड के जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस लो के रिव्यू में 100 से ज्यादा रिकमेंडेशंस सामने आई है। प्रपोज्ड चेंज में भाई यूनियन ऑफिशियल के लिए फिट एंड प्रॉपर टेस्ट भी शामिल है। इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या होगा, ये इम्प्लीमेंटेशन और आगे के जो डिसीजंस है उस पर डिपेंड करेगा। वर्किंग लिसनर्स के लिए ये याद रखना भाई इम्पॉर्टेंट है कि वर्कप्लेस पॉलिसीज और एम्प्लॉयमेंट राइट से जुड़ी अपडेट्स पर नजर जरूर रखनी चाहिए। आइए फिलहाल में नजर रखते हैं इस गीत पर ऑनली ऑन रेडियो ब्रिसवानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्पानी में। तो अब भाई म्यूजिक लवर्स के लिए एक एक्साइटिंग अपडेट सामने आई है। ऑस्ट्रेलियन बैंड पाउडर फिंगर ने अपने 2027 टूर के लिए एडिशनल शोज जो है वो अनाउंस किए हैं। एबीसी ब्रिस्बेन की रिपोर्ट के मुताबिक टूर में भाई ब्रिस्बेन, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ, सिडनी जैसी सिटीज शामिल है। तो ऑस्ट्रेलियन म्यूजिक के फैंस, अगर आप पाउडर फिंगर को लाइव सुनना चाहते हैं ना, तो भाई ऑफिशियल टूर अनाउंसमेंट और टिकट इन्फॉर्मेशन चेक करते रहिएगा। और वैसे दोस्तों ब्रिस्बेन वालों, एक सवाल आप सभी के लिए, भाई आपकी मॉर्निंग ड्राइव में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? स्ट्रॉन्ग कॉफी, फेवरेट प्लेलिस्ट, या फिर कोई ऐसा इंसान जो सुबह सुबह आपको भी फोन करके पूछता है भाई उठ गए, और फिर खुद कहते हैं अच्छा मैं तो अभी उठा ही नहीं, वाजवा क्या बात है ना। ऐसे भी दोस्त होते हैं, तो कभी कभी ऐसे दोस्त भी पसंद आते हैं। तो आइए फिलहाल सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ दोस्तों अब चलते हैं भाई इंडिया की तरफ, क्योंकि इंडिया की न्यूज और देसी अपडेट्स के बिना भाई हमारी मॉर्निंग कैसे कंप्लीट हो सकती है। इंडिया में भाई सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज को लेकर डिस्कशंस जारी है। 14th October की रिपोर्टिंग के मुताबिक एक जो पार्लियामेंट्री पैनल है उन्होंने सैटेलाइट इंटरनेट को डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए सिलेक्ट किया है। स्टारलिंक, ऑटलसेट जो वन वेब है, और जियो सैटेलाइट जैसे वेंचर्स इंडिया में भाई सैटेलाइट कनेक्टिविटी से जुड़े अप्रूवल्स के लिए अप्लाई कर चुके हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के पोटेंशियल ये है कि रिमोट एरियाज में कनेक्टिविटी के नए ऑप्शंस मिल सकते हैं, लेकिन सर्विस कब और किस तरह अवेलेबल होगी ये अप्रूवल्स, रेगुलेशंस और कंपनीज के भाई रोल आउट प्लान्स पर डिपेंड करेगा। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ अगर हम इंडिया के एंटरटेनमेंट और कल्चर की बात करें तो इंडिया में एंटरटेनमेंट और कल्चर हमेशा डिस्कशन का फेवरेट टॉपिक रहता है, चाहे मूवीज हो, म्यूजिक हो या फिर फेस्टिव सेलिब्रेशंस। जी हाँ, हमारे देश में हर रीजन की अपनी एक स्पेशल आइडेंटिटी है और अब दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में रहने वाले इंडियंस भी अपनी लैंग्वेज, म्यूजिक और ट्रेडिशंस को नए जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी भाई इंडियन म्यूजिक और भाई कल्चर इवेंट्स जो है वो कम्युनिटीज को कनेक्ट करने का एक इम्पॉर्टेंट जरिया है। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक, उसके बाद जाएंगे भाई अपने फिल्मी तड़का एंड बॉलीवुड गॉसिप की ओर।

रेडियो ब्रिस्वाने में एक बार फिर से आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं भाई लेडीज और जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है उस सेगमेंट का जिसका इंतजार होता है फिल्म लवर्स को। इट्स टाइम टू फिल्मी तड़का। मैं हूँ फिर से भी आपकी दोस्त आरजे चानी और आज की बॉलीवुड हेडलाइंस लेकर आई हूँ। रैपर और सिंगर यो यो हनी सिंह एंटरटेनमेंट हेडलाइंस में है भाई। अगर आज हम बात करें NDTV जो रिपोर्टिंग है उसके अकॉर्डिंग, तो दिल्ली कॉन्सर्ट के एक वायरल क्लिप के सिलसिले में भाई उन्हें समॉन किया गया है और भाई 16 अक्टूबर को अपियर होने के लिए कहा गया है। इस मैटर में आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है वो भाई ऑफिशियल अपडेट्स से ही क्लियर होगा। फिलहाल हनी सिंह का नाम एंटरटेनमेंट न्यूज में भाई चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगर हम दृश्यम 3 की बात करें तो दोस्तों अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 3 भी बॉक्स ऑफिस हेडलाइंस में चर्चे में बनी हुई है भाई। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अपडेट्स की, तो भाई दृश्यम फ्रेंचाइज का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हमेशा उसकी मिस्ट्री और ऑडियंस को भाई गेस करने पर मजबूर करने वाली स्टोरी टेलिंग रही है। आपको बताएं कि थ्रिलर मूवीज में आपको क्या ज्यादा पसंद है, ऐसी फिल्म जिसका एंडिंग आप पहले ही गेस कर लें या फिर ऐसी फिल्म जो लास्ट मूवमेंट पर भी आपका दिमाग जो है घुमा के रखे और हम सोचते रहे भाई अब क्या होएगा, है ना जी। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे अगले गीत की ओर।

शिकवे हैं, किस्से हैं, बातें हैं। बातें भूल जाती हैं, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। ये यादें, हाय यादें, यादें।

आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी। जी हाँ, और इसी के साथ भाई बहुत सारी बातें होगी, तो भाई आज का थॉट तो बनता ही है। आज का थॉट ऑफ द डे ये है कि दूसरों की स्पीड देखकर भाई अपनी जर्नी को जज मत कीजिए। बस इतना इंश्योर करो कि आज आप कल से एक छोटा सा स्टेप आगे जरूर बढ़े हैं। और एक बात और, अपनी सक्सेस को सिर्फ मनी, फॉलोअर्स या फिर अचीवमेंट से मत नापना दोस्तों। कभी अपनी सक्सेस ये भी मानिए कि आपने मुश्किल दिन में भी भाई हिम्मत नहीं हारी है, हिम्मत नहीं तोड़ी है। आपने किसी को हर्ट करने के बजाय माफ करना चूज किया है। आपने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ वक्त बिताना शुरू किया है। आपने अपनी हेल्थ और पीस को इम्पोर्टेंस दी है। ये सब भी लाइफ की मीनिंगफुल अचीवमेंट्स ही है दोस्तों। तो ब्रिस्बेन, आज अपने दिन की शुरुआत एक प्रॉमिस के साथ जरूर कीजिए कि मैं अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करूंगी या करूंगा, मैं अपनी प्रोग्रेस को नोटिस करूंगा और मैं हर दिन परफेक्ट होने के प्रेशर नहीं लूंगा, बिकॉज यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट टू मेक प्रोग्रेस दोस्तों। जी हाँ, तो आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, कहते कहते बोलते बोलते इतना वक्त हो गया कि अब जब घड़ी की ओर नजर गई तो वो कह रहा है चांदनी जी अब बस कीजिए, दूसरों को भी मौका दीजिए। जी हाँ, तो इसी के साथ वक्त हो गया है आप सभी को बाय बाय टाटा कहने का। कल फिर हाजिर होंगे आप सभी के बीच लेकर बहुत सारी अपडेट्स। और हाँ जी, ड्राइव सेफली कीजिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अपने भाई लव्ड वंस को भी बताते रहिए कि वो आपके लिए कितने स्पेशल है। सो मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे चांदनी जैन और आप सभी सुन रहे थे रेडियो ब्रिस्वानी में भाई चांदनी का सफर। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स, फ्रेश एनर्जी और ढेर सारी बातों के साथ। तब तक के लिए भाई कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग ऑलवेज और अपनी मॉर्निंग को बनाए हुए absolute wonderful। जी हाँ, so once again very very good morning and have a beautiful Thursday, take care, bye bye।

0: मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तू इसको पकड़ के लाया या ये तेरे।
1: नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्तानी 1701। हम ये सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। वीडियो पोस्ट ना करें, घर के अंदर रहें। सऊदी अरेबिया में भारतीयों के लिए नई एडवाइजरी। सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। ये एडवाइजरी तब जारी की गई है जब सऊदी शहरों के लिए भारतीय एयरलाइंस की सेवाएं 17 अक्टूबर तक सस्पेंड होने के कारण उड़ानों में रुकावट आई है। रियाद में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों को शांत और सतर्क रहने, हवाई हमलों की स्थिति में घर के अंदर रहने और आधिकारिक चैनलों के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। जापान में 30 टन वजनी और 160 मीटर लंबी रेस खींचने की होड़। जापान के नाहा में पारंपरिक ग्रेट टग ऑफ वॉर प्रतियोगिता में हजारों लोगों ने 160 मीटर लंबी और 30 टन वजनी रस्सी खींची। ये परंपरा 15वीं सदी से चली आ रही है। लोग अच्छी फसल, सेहत और संतान सुख की कामना के लिए एक साथ जुटे थे। उत्सव में पूर्व और पश्चिम की टीमों के बीच मुकाबला हुआ। हालांकि ये मुकाबला इस साल करीब 10 मिनट तक चला, लेकिन मैच ड्रॉ रहा। ब्रेग्जिट जनमत में रशिया ने दिया था दखल, ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम का सनसनीखेज दावा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम एक सनसनीखेज दावा करके सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि साल 2026 में यूरोपीय यूनियन से अलग होने के ऐतिहासिक ब्रेग्जिट जनमत संग्रह में रशिया का दखल था। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि ये दखल कैसे हुआ, ना ही उन्होंने अपने दावों का कोई सबूत पेश किया है। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के मतदाताओं को भी रशिया से दूर रहने के लिए आगाह किया है। तुम आतंकवादी हो, अमेरिका में मोहम्मद यूनुस का जोरदार विरोध, बांग्लादेशी प्रवासियों ने घेरा। बांग्लादेश की पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख और नोबेल पुरस्कार विजेता यूनुस को न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी प्रवासियों के कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। जब वो हवाई अड्डे पहुंचे तो प्रवासियों के एक समूह ने उन्हें घेर लिया और गंभीर आरोप लगाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन्हें आतंकवादी कहा और उन पर कुछ लोगों की जान लेने तथा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए। मुख्य सलाहकार पद से हटने के बाद यूनुस की ये पहली विदेश यात्रा है। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारतीय सूट जो 1500 डिग्री सेल्सियस पर 190 सेकेंड तक बचाव करेगा। मेक इन इंडिया टेक्निक पर बने फायर सेफ्टी सूट बहुमंजिला इमारत, कारखाने, औद्योगिक इकाइयां और रिफाइनरी में भयानक आग लगने पर जान बचाने में मददगार साबित हो सकेंगे। ये विदेशी सूट के मुकाबले सस्ते और आग के उच्च तापमान को रोकने वाले हैं। इसे उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, IIT कानपुर, BHU और रुड़की के सहयोग से मथुरा के स्टार्टअप सिक्योर फायर इनोवेशन फायर प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। कंपनी ने करीब 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान में 190 सेकंड तक बचाव करने का दावा किया है। सूट में सेंसर युक्त अलार्म भी लगा हुआ है। अब तक की प्रमुख खबरें, अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 04209331711 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 04209331711। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
4: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck. और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's Indian and Island Food, serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
6: और चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर हम टच बेसिस कर लेते हैं। ओम, कैसे हैं आप? रोहित, कैसे चल रहा है भाई? How is it going, the show? Preparation and all that?
7: Very nice. Very nice. We are very excited.
6: Oh, good, good, good, good.
7: सबको ब्लेसिंग से बहुत अच्छा ये हो रहा है। सबसे पहले रिजवानी सुनने वाले सभी ऑडियंस को रोहित का प्यार भरा नमस्कार
6: जी।
7: ओम भी हमारे साथ हैं।
6: हेलो
8: जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1420 फैमिली की तरफ से भी तमाम श्रोताओं को मैं नमन करता हूँ, और ऑब्वियसली जो प्यार, जो आशीर्वाद हमें रेडियो बिस्वानी की तरफ से हमेशा मिलता रहा है, वो इस बार भी मिल रहा है। तो बस यही है कि एक क्विक रिमाइंडर अंकल की

0: show is going to happen on this coming Saturday.
1: Yep.
0: तो जिन लोगों ने टिकट ले लिया है भाई आ जाएं, और मैंने बताया था एक्सक्लूसिव रेडियो ब्रिजवानी के लिए हमने कुछ टिकट्स अलग से रखे हैं. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने, रोहित कैन यू गिव योर नंबर ऑन एयर सो एवरीबॉडी कैन नोट इट डाउन जस्ट इन केस,
2: जस्ट टू लेट एवरीवन नो, पीपल हैव फाउंड आवर नंबर, आई मीन कॉन्टेक्ट, एंड दे हैव सेंट as messages. There's yep. been an overwhelming response.
1: Oh, good.
2: So we've got some very limited tickets now. And I'll give you the contact number where they can send a SMS
1: yep.
2: and wait for a confirmation.
1: Yes.
2: The number is 0401-730068. I repeat, it's 0401-730068.
0: So, can you also mention the venue and stuff like
2: yes.
0: that?
2: The venue is the beautiful Sandgate Town Hall, which is in Sandgate.
1: Yep.
2: It's very easy to locate it on the map. It's a heritage listed building.
1: Uh-huh.
2: It's a beautiful venue.
1: Uh-huh.
2: Aap sab aaiye aur enjoy kijiye. We'll be very excited to perform. और अंकल ऐसा है कि जितने ऑडियंस हमको सपोर्ट करती है उतना हमारा जोश बढ़ता है और हमारी परफॉर्मेंस उतनी निखर के आती है.
1: जी बिल्कुल.
2: तो
1: बिल्कुल.
2: जितना भी आपका प्यार मिलेगा, हम वो हमारी यही कोशिश रहती है कि हम अपना 100% से ज्यादा ही हम परफॉर्म करके सबको एंटरटेन करें. और प्लीज आइए, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट.
1: So, ये लोग कॉल करेंगे आपको उस नंबर पर और टिकट अपना वहां पर रिजर्व करा लेंगे. ठीक है.
2: हाँ, या तो कॉल करें या तो
1: मैसेज
2: एसएमएस करें.
1: ओ अच्छा.
2: और हमारे आई विल डेफिनेटली सेंड देम अ कंफर्मेशन.
1: यस,
2: क्योंकि हमारे हम उनका नाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर अगर लिख के हमको भेज दें एसएमएस में.
1: ये हमारे जो ब्रिजवानी के लिसनर्स है और उनका कॉस्ट कितना रहेगा?
2: No, for we've got exclusively 30 tickets.
1: Yeah.
2: तो जो ब्रिजवानी के नाम से जो आएंगे और हम of course after getting a confirmation,
1: yes.
2: उनके लिए हम special उनको हम free में टिकट दे रहे हैं.
1: अच्छा.
0: और just to remind again, ये जो टिकट है जो हम उनको दे रहे हैं, हमारा प्यार दे रहे हैं, वो एक्सक्लूसिव बालकनी टिकट्स है. वो मेन रो में, मेन सिटिंग में नहीं बैठेंगे प्लीज.
1: अच्छा. ओके. हाँ हाँ, दैट्स ऑलराइट. अब एटलीस्ट देखने को तो मिलेगा, दैट्स द मेन थिंग.
0: एब्सोल्युटली.
1: आज सुबह मैंने जी जी बोलो.
2: ये जो टिकट्स हैं, ये एक्चुअली फैमिली और फ्रेंड्स के लिए हमने रिजर्व किए थे. बट ऑफकोर्स ब्रिजवानी, वी कंसिडर ब्रिजवानी ऑफकोर्स यू and auntie and the whole family of Brizwani we consider as our own family.
1: जी, thank you.
2: इसलिए हम उनको ये न्योता दे रहे हैं कि आइए और हमारे साथ जुड़ जाइए as a family. And हमारा performance देखिए और उसको you know, you appreciate it, you know.
1: जी जी जी जी. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. और देखिए, ठीक है, आपने पता बता दिया कहाँ पर जाना है. और हमारे ब्रिजवानी टीम के लिए ये जो प्राइस, उसमें प्राइस नहीं है. और आप सिर्फ उस नंबर पर, क्या था, 0401733, व्हाट वाज इट?
2: सो इट्स, आई विल रिपीट, इट्स 0401730068.
1: ओके. अच्छा, आज सुबह जब हम अंदर आए तो मैं एक गाना सुन रहा था और वो गाना था ओ मारिया. रिमेम्बर दैट सॉन्ग?
2: ओ यस यस, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट.
1: ऑनेस्टली, इट वाज प्लेइंग ऑन द रेडियो दिस मॉर्निंग व्हेन आई केम इनटू द स्टूडियो. मैंने बोला आहा, ये तो रोहित गाता है गाना. इज इट द ट्रू अमिता? दिस सॉन्ग वाज प्लेइंग ऑन. देखो, मेरा मेमोरी अभी भी अच्छा है, बहुत खराब नहीं है.
2: So obviously आप ये हिंट कर रहे हो कि वो आपको सुनना है.
1: समझ गए आप.
2: आप आप आप अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे अंकल. आप
1: देखिए, लोग मुझे कहने लगे कि मैं, सुनियो रोहित, लोग मुझे कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा लायर हूँ. लोया नहीं लाया, क्योंकि मैं रोज सुबह न्यूज देता हूँ वेदर का, वो कभी होता नहीं, बारिश नहीं हो रही, तो इसीलिए देव ब्रेंड मी एज अ लायर। लेकिन मैं सच में कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आज सुबह झूठ मत बोलना, है गाना है ना, याद आ गया, मुझे याद है, जैसे जैसे मैंने हला आज तो ये गाना बज रहा था, अंदर आया मैं, ओ मारिया, सो आई ऑनेस्टली आई थॉट अबाउट यू, तो थोड़ा सा सुना दो आप।
2: श्योर श्योर। ओ मारिया ओ मारिया ओ मारिया हो ओ मारिया। अरे जानी जब बुलाता तुझसे शादी करेगी मुझसे, कैसे कहा था ये बता।
0: रोहित यहाँ पे बोला देता जतीश, जब बुलाता तुझको शादी करेगी एमजी, ऐसे कहा था ये बता।
1: नहीं, हमारे बीच में कब हो गया, कैसे हो गया तो मालूम ही नहीं है, ये सब तो नहीं मुझे पता है। एनीवे, चलो थैंक्स थैंक्स थैंक्स फॉर सिंगिंग दैट। मैं जानता हूँ सुबह सुबह गाना गाना बहुत कठिन काम है। खैर, बहुत अच्छा गाया, लेकिन फिर भी तो चलो दोस्तों, अगर हमारे जो ब्रिस्बेन के जितने भी लिस्टर्स अभी सुन रहे हैं, आप उस नंबर पर टेक्स्ट कीजिए और यू गेट अ टिकट टू गो एंड वॉच बालकनी टिकट से, विच इज स्टिल वेरी गुड, एंड यू कैन यू नो एक्चुअली द साउंड माइट बी बेटर ओवर देयर आई थिंक। So
0: that's a better view. That's a better viewing as well, uncle. Yeah, you know, it's beautiful.
1: Okay,
0: you know.
1: All right. और कुछ कहना आपको?
2: और ये
0: बस यही कहना चाहेंगे कि बस आइए और enjoy कीजिए बस, you know.
1: All right.
0: हम लोगों ने बहुत खूबसूरत प्रोग्राम संजोया है सबके लिए, और लोकल टैलेंट ऑब्वियसली, तो आपका encouragement, आपका आशीर्वाद, आपका प्यार चाहिए. That's it.
1: Okay. Thank you so much.
2: और दिवाली के मौके पर हमने ये किया हुआ है, सो इट इज इट्स गॉट एन एप्ट नेम, बॉली टू ब्रिजी, और म्यूजिकल सेलिब्रेशन, तो दिवाली के लिए हम ये कर रहे हैं।
1: अच्छा जी,
2: आइए हमारे साथ, यू नो, एंजॉय कीजिए।
1: थैंक यू वेरी मच,
0: थैंक यू अंकल फॉर हैविंग अस।
1: ओके, तो ओके, राइट, तो चलिए दोस्तों, आप उस नंबर पर भेजो, मैं तो लिख नहीं पाया था, 0040173888 ऐसे कुछ था। ओह, आई एम सो सॉरी मैन। एनीवे, आपने तो नंबर लिख लिए होंगे शायद, अगर नहीं तो मैं फिर फाइंड आउट कर लूंगा नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ऑलराइट, चलो गीत सुनते हैं दोस्तों, फिर हम आते हैं। Oh.

0: गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप सूझ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

0: क्या गाना दोस्तों, तू मेरे अंधे कुएं में आकर दीप जला कर कर दे उजियाला। एक लाइन है इसमें, अगर आप नहीं देखे इसको जाकर देखे, वीडियो देखे दोस्तों, वन ऑफ द क्लासिक मास्टरपीस कॉमेडी सीन है दोस्तों, जिसमें किशोर कुमार खुद नाच रहे हैं और मुखरी है इसमें, सुनील दत्त है, वंडरफुल, आप देखे होंगे, बट इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल कॉमेडी सीन है दोस्तों। माफ करना गला, सुबह सुबह मालूम नहीं क्या कॉफी भी पिया हूँ, वन ऑफ द बेस्ट कॉफी स्टिल। आई एम गेटिंग दिस,
1: यू आर गोना गेट इनटू सच ट्रबल वन ऑफ दीस डेज, एंड नाउ आई कैन वेरीफाई,
0: व्हाई, बिकॉज़ यू मेक द बेस्ट
1: कॉफी, आई कैन वेरीफाई दैट यू आर अ बिग लायर।
0: ओह माय गॉड, हाउ कैन यू वेरीफाई आई एम अ बिग लायर?
1: बिकॉज़ यू हैव बीन सेइंग दैट लाइन, नोबडी मेक्स
0: कॉफी, गुड कॉफी लाइक यू, कम ऑन,
1: यू हैव बीन सेइंग दैट लाइन to more than one person.
0: Oh, have I?
1: You've been saying that to everyone.
0: Have I?
1: You just know how to butter your bread on all sides. Not even both sides, all sides.
0: Six sides. Oh, boy. I don't know, maybe it's early in the morning and morning ke samay coffee acha lagta hai, shayad isiliye.
1: Well, the first cup always tastes good. Yeah. Yes. Right.
0: ओके तो चलिए दोस्तों, ये थोड़ा कॉमेडी वाला गाना था और बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है आपको भी उतना ही अच्छा लगा होगा जितना मुझे अच्छा लगा। और आई सपोज बिकॉज आई वाज वाचिंग ऑन वीडियो एंड द सीन इज सो ब्यूटीफुल, सो वेल डन, इवन द म्यूजिक, यू नो दैट म्यूजिक दैट कीप्स प्लेइंग। ओके, इस समय बस एक मिनट रह गया है 8 बजने में, और बतला दूं कल हम नहीं रहेंगे, कल नीलम के साथ आप रहेंगे दोस्तों, और शनिवार को भूलना मत परमा भाई के साथ आप रहेंगे, तो कार्यक्रम जरूर सुनिएगा,
1: और भूलिए ने भूलना मत, नो प्रोग्राम्स ऑन संडे।
0: ओह एक्सक्यूज मी, प्रोग्राम संडे को 6 बजे से बंद होगा, और ये कह रहे हैं कि अभी मुझे सुनने में आया कि दिस माइट फिल्टर ऑन टू मंडे, आई डोंट नो, बट देयर विल बी नो प्रोग्राम ऑन संडे, प्लीज नोट, सुबह से 6 बजे से अगर चलता रहेगा तो चलता रहेगा, फिर अगर अचानक से ऑफ हो गया इसका मतलब हमारा पावर यहाँ ऑफ हो गया, ठीक है। ये बहुत आई नेवर हैव सीन अ पावर गो आउट फॉर दैट लॉन्ग, तो ये लोग पहले से बता दिए हैं, और शायद ये इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पर भोजन वोजन का बातचीत नहीं बहुत हुआ होता होगा, अगर रेजिडेंशियल होता तो आई डोंट नो व्हाट दे वुड हैव डन, सो यही बात है दोस्तों, तो चलो ठीक है, आगे चल के अच्छा होगा, वे आर ट्राइंग टू मेंटेन द लाइंस पावर, एक्चुअली वी डोंट गेट टू मेनी पावर आउटेजेस हियर, डू वी?
1: नो, दिस इज बिकॉज दे डूइंग सम अपग्रेड, okay, to the lines. That's the reason. They've done it to us also at work about a year or two ago. But we had issues after
0: that.
1: Kya
0: upgrade kar rahe honge? Kya upgrade kar rahe honge? Power still comes, upgrade kya? Mercedes or this ka baat ka thoda hai. I mean,
1: like, no, I don't know. Sometimes the thing is getting old and they need to change it over.
0: I think they may be changing some of the power poles.
1: Let's read the
0: power poles.
1: Did you even read the notice?
0: No, I read it. I don't think it says
1: there. Do they say what they're doing?
0: No,
1: they would say what they're doing.
0: No, they didn't say anything about that.
1: Normally they do tell us.
0: They did go around yesterday and today looking for all the meter box.
1: Yeah.
0: So I think what they will do, they will systematically will be turning it off, right?
1: Right, yeah.
0: Because a three-phase, you can't just, you know.
1: No,
0: so
1: you can't.
0: I'm sure there will be so minimal damage to the equipment because this is very heavy industrial. And, so that might be what it is. I think they just say key upgrade or something. I don't think they don't specifically say what they are doing.
1: Okay, they say only say it is necessary. This interruption is necessary.
0: Yeah.
1: To allow maintenance of the electricity network, so they're not actually telling us anything.
0: No, they're not. I think what they might be doing, they might be changing few poles. You know.
1: Could be.
0: Yeah, because they have been here long enough.
1: Yeah, that's what happens sometimes.
0: Yeah, so that might
1: Like, say you are connected, your place will be connected to a certain pole, you know, the lines that come.
0: Yeah.
1: Sometimes if they're doing something, some work on that, they have to turn everything off.
0: Yes, the whole...
1: So they warn us in advance, you know.
0: Yeah. And I know exactly where those poles breakers are, where they're going to be pulling it out.
1: There you go.
0: So that is my street, this street here.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay, so chalo theek hai. It's maintenance and it's safety bhi hoga isme. Bahut kuch hoga. To dosto, I don't know. Even it happens, it happens. Mm. And yeah, I don't have any other way of putting radio on air. it's a massive power, so I can't supply backup power.
1: Mm.
0: Anyway, aage badhte hain, chalo.
1: Can I play a funny song?
0: Yeah,
1: that you played a funny song.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah. Okay.
1: I will.

अभी अपने गाना बनाया तो चलो बजाया तो चलो उसी तरह से और एक गाना है और सेम एक्टर है इसमें भी आई डोंट नो इफ द सेम मूवी लेकिन चलो शायद आपको अच्छा लगेगा।

0: दिवाली का त्योहार आ गया है दोस्तों। श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन ऑफ क्वींसलैंड इंक ले आए हैं एनुअल दिवाली मेला सैटरडे 24 अक्टूबर 2026 फ्रॉम 4 PM। $15 पर पर्सन है एंट्री फी और चिल्ड्रन अंडर 12 इयर्स फ्री। वेजिटेरियन डिनर इंक्लूडेड एट सनातन सेंटर, 550 वेम्बले रोड, बेरनबाग, क्वींसलैंड 4117। एंजॉय कीजिए स्टॉल्स, फ्री किड्स क्राफ्ट एक्टिविटीज, कल्चरल परफॉर्मेंसेज, हिना और दिया लाइटिंग सेरेमनी भी। और जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट कोऑर्डिनेटर अशोक प्रसाद ऑन 0419334418 या फिर सेक्रेटरी राजेंद्र प्रसाद ऑन 0410454649। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का जश्न मनाइए पूरी फैमिली और अपने कम्युनिटी के साथ। लाइट्स यूनाइट अस ऑल।
1: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
2: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
1: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 0430228009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
3: चलो चलो, दीपावली आ गई है। शिव शक्ति कल्चरल एंड एजुकेशन सिटी ऑफ मॉडर्न डे एसोसिएशन इन कॉर्पोरेशन पेश करते हैं दीपावली उत्सव 2026 फेस्टिवल ऑफ लाइट। सैटरडे 24 अक्टूबर को स्टॉल्स ओपन होंगे फ्रॉम 3 PM और फॉर्मल प्रोग्राम शुरू होगा फ्रॉम 7 PM एट पाइन रिवर स्टेट हाई स्कूल ऑडिटोरियम, ग्राहम स्प्रॉट असेंबली हॉल, स्ट्रैट पाइन। ध्यान रहे, एंट्री होगी वाया एश कोट। होंगे बहुत सारे स्टॉल्स जैसे हिना, रंगोली कॉम्पिटिशन, वेजिटेरियन क्यूजीन, किड्स ड्रेस अप कॉम्पिटिशन, कल्चरल एंड बॉलीवुड परफॉर्मेंसेज और नव दुर्गा ड्रामेटिक डांस, राफल्स एंड डांस द नाइट अवे के साथ लाइव म्यूजिक भी। टिकट प्राइजेस आर $20 पर हेड, $50 पर फैमिली, जिसमें कपल्स के साथ 2 किड्स अंडर 16 इयर्स आर इंक्लूडेड और किड्स अंडर 12 यस होंगे फ्री। ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट नीलिमा ऑन 0405409156। आई रिपीट, 0405409156 या आप ब्रिस्वानी की ऑफिशियल वेबसाइट www.briswani.com पर इवेंट सेक्शन में जाकर भी जानकारी ले सकते हैं। आइए मिलकर दिवाली का फेस्टिवल मनाएं। दीपावली उत्सव 2026 सैटरडे 24 अक्टूबर 2026, इवेंट प्राउडली सपोर्टेड बाय द सिटी ऑफ मॉर्टन बे।
4: और 22 मिनट हो गए हैं 8 बजकर। दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो बिजवानी, आपकी अपनी पहचान। याद दिला दूं कि इस कार्यक्रम के बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ, और 11 बजे से पंजाबी प्रोग्राम है संदेश के साथ, और फिर 3 बजे से भूलना मत आप हो जाएंगे निविया के साथ।

0: ये गंगा राम की समझ।
1: देखो देखो गंगा राम की समझ में ना आए।
2: देखो देखो
1: गंगा राम, गंगा राम इज़ा गंगा राम, उसको कह देते हैं दोस्तों जो थोड़ा स्लो होता है कभी कभी, जैसे सुबह सुबह मैं स्लो होता हूँ ना,
2: हाँ
1: तो जो थोड़ा स्लो होता है, जो थोड़ा समझने में टाइम लगता है, उनको बहुत समझाना पड़ता है, उसको बस हम गंगा राम बोल देते हैं। तो इसी तरह ये इस मनोज जी को कोई पसंद नहीं आ रहा तो ये लड़के लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, तो कहते हैं कि गंगा राम के समझ में ना आए। समझ नहीं पाए, एक से एक लड़की को बारे में बता दिया फिर भी इसके समझ में नहीं आ रहा, पूरा गंगा राम है। समझ गए? ओके चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं।

जाता हूँ। अच्छा चलिए, अच्छा तो हम नहीं चलते हैं अभी लेकिन एक गाना ऐसे आ गया, शायद जॉनर से थोड़ा डिफरेंट हो लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है कि आप भी पसंद करोगे। थोड़ा सा स्लो है, यू मेबी यू आई डोंट नो यू बट यू स्टिल लाइक इट, यू स्टिल लाइक इट। ओके तो चलो गाना है जो दोस्तों आप बताइए आपको कैसे लगता है गाना, ठीक है। रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं, आपकी अपनी पहचान।

0: जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा गीत जो शायद हम जब सुनते हैं तो हमेशा अच्छा ही लगता है। चलिए, रेडियो मिज़बानी आप सुन रहे हैं आपकी अपनी पहचान, और आगे बढ़ते हुए चलो इस गीत को सुनते हैं। रेडियो मिज़बानी से आप सुनेंगे।
1: करूँ मैं क्या, सुकु सुकु खो गया दिल मेरा, सुकु सुकु

0: तो हाथ है, जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है, कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूं मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल में।

0: जी हाँ दोस्तों, पेरिस की रंगीन शाम तो नहीं दिखा सकूंगा, लेकिन मैं ब्रिस्बेन का जरूर दिखा सकता हूँ। जी हाँ, कैसा लगा गीत? उम्मीद है गीत आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं दोस्तों, आपकी अपनी पहचान। और चलो आगे बढ़ते हैं, आज कुछ ऐसे ही गीत हम लेकर आए हैं, कुछ फन फील्ड गीत, उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। और आगे चलते हैं, और क्या है आगे?
1: What's okay. playing? I'll play a song and then what's the second last song? Yeah.
0: Oh, is that time?

0: ओके, एक आखिरी गाना है और इस गाना के साथ हम निकल रहे हैं. तो
1: व्हाट यू लुकिंग? आई एम चेकिंग व्हेदर यू प्लेइंग इट और आई एम प्लेइंग इट. व्हाट इज हैपनिंग? आई विल प्ले द लास्ट सॉन्ग.
0: और हम मिलेंगे फिर मंडे को. डोंट नो.
1: वी डोंट नो.
0: व्हाई
1: नॉट? हम डोंट नो. वी डोंट नो इफ द पावर इज गोना बी बैक.
0: Oh yeah, but most likely it'll be back. I'm sure they won't keep it that long. But they said, well, yeah, I don't know what they said. It's all hearsay at the moment. जो कुछ भी हो दोस्तों, वैसे मंडे को आते हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा तो मंडे को हम आएंगे.
1: Yes. So take care.
0: संडे को मेरा प्रोग्राम नहीं होगा.
1: Oh, how happy you sound.
0: No, I don't sound happy. I mean, I know my listeners are there, but...
1: Well, anyway.
0: I can sleep in a little bit.
1: You could. Yes, you could.
0: कोई बात नहीं दोस्तों, आप रेडियो बिजबानी सुनते रहिए. बट इंटरनेट में मैं कोशिश करके इंटरनेट में प्रोग्राम रखूंगा. I'll see. That has to be done through, not the studio, some other way. Because studio का पावर ऑफ है.
1: All right.
0: ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं.
1: जी नमस्ते एवरीवन. हैव अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल
2: तो हम चलते हैं
1: वीकेंड.
2: अच्छा.

अजी बस बस बस बस, अब तो इस ट्रैक में ऐसे खो गए कि भूल ही गए कि इस ट्रैक के उस पार आपकी मुलाकात किससे होने वाली है। भाई गुड मॉर्निंग बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हमें राम राम कह रहे हैं आपसे। गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं? सब बढ़िया? हाँ, तो देखिए रोज़ की तरह आज भी एकदम टाइम पे हूँ ना, खड़ियाँ चेक कर लीजिए अपनी। हाँ, मेरी एक ख्वाहिश जो है वो यही होती है कि हर रोज अपना वादा बिल्कुल सही समय पर निभा दूं, और आज भी ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, इट हैपेंस। मैं एक और बेहतरीन साथ के साथ सताक्षी आ गई आपके लिए लेकर कुछ खास गाने, जैसे कि आप अभी सुनकर खो गए थे जिसमें, और हमारी और आपकी कुछ खास बातें। तो चलिए अपने इस दिन को और भी खास और बेहतरीन बना लिया जाए इस अगले ट्रैक के साथ। आइए आगे बढ़ते हैं इस गाने के साथ, और उसके उस पार होंगी कुछ और बातें आपसे। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रजवाणी।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर सताक्षी को सुन रहे हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ आज के कुछ मॉर्निंग ट्रैक्स भी। वेल, जिनके लिए आज दिन खास है उनके दिन को खास किए देते हैं और भी भाई जन्मदिन। हाँ हाँ, पता है आज आपका जन्मदिन है, हम बिल्कुल नहीं भूले, कैसे भूल सकते हैं, आप इतने खास और स्पेशल हमारे लिए भी तो हैं। तो बर्थडे जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो, आपका जन्मदिन आपको बहुत मुबारक हो और इस जन्मदिन के साथ जो है आपकी जिंदगी रोशन रहे, खुशियों से भरी रहे। इसी विश के साथ विश करते हैं जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह की ढेरों ढेर शुभकामनाएं। और देखिए जनाब, शादी करना, साथ फेरे लेना या जिस भी धर्म में आप हैं उस धर्म से में शादी करना आसान हो सकता है, मुश्किल होता है शादी को निभाना। और आज के वक्त में जब हम बहुत तेजी से भाग रहे हैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे, अपने सपनों के पीछे, तो ये और भी मुश्किल हो रहा है। इसलिए बहुत प्यार से, बहुत पेशेंस से, थोड़े से कॉम्प्रोमाइज से आपको इस बंधन को निभाना है, ठीक है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए डेडिकेट करेंगे अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ सुनते रहिए। इट हैपेंस।

वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। सुबह के इस ब्रेकफास्ट शो में एक बार फिर से सताक्षी करती है आपका स्वागत। सैड कहानियाँ, आपको क्या लगता है कि जिंदगी की सारी सैड कहानियाँ सिर्फ आपके पास हैं? जी नहीं दोस्तों, जिंदगी की सैड कहानियाँ हम सबके पास हैं, लेकिन वो क्या है ना कि कुछ लोग एक्सक्यूजेज में अपनी जिंदगी गुजार देते हैं उन सैड कहानियों का बहाना बनाकर। भाई मेरी जिंदगी तो दुखों से भरी पड़ी थी, वरना मैंने ऐसा कर लिया होता। मेरी जिंदगी में ईश्वर ने भर भर के परेशानियां दी थी, वरना मैं तो कहां की कहां होती। बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस हैं जो आप बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग ना बहुत ही खास होते हैं और वो लोग इन सैड कहानियों को एक्सक्यूज नहीं बनाते, इन्हें अपनी जिंदगी का मोटिवेशन बना लेते हैं और वही मोटिवेशन उन्हें जिंदगी में बहुत आगे लेकर जाता है, उन्हें बहुत प्रेरित करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए और इस जिंदगी को जीने के लिए। सो आई विश कि आप अपनी जिंदगी की सैड स्टोरीज का एक्सक्यूज ना देते हुए इसको एक मोटिवेशन की तरह लें और जिंदगी में कुछ करके दिखाएं। इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रस्वानी, सताक्षी के साथ एंजॉय करते रहिए। इट हैपेंस।

आप रेडियो प्रस्वानी पर और इट हैपेंस में आज एक बार फिर से आपका साथ निभा रही है आपकी अपनी सताक्षी। भाई देखिए, जिंदगी है तो जिंदगी में परेशानियां भी होंगी। भाई अगर परेशानियां नहीं होंगी तो सिर्फ अच्छा अच्छा होगा, तो कभी सोचा है कि हमें ये एहसास कैसे होगा, हमारी पीढ़ियों को ये एहसास कैसे होगा कि दुख भी किसी बला का नाम है? और फिर जब कभी जिंदगी में अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने की बारी आएगी तो हम तो एकदम घबरा ही जाएंगे। अच्छा, आज मुझे लगता है कि हो भी यही रहा है। पहले के लोग ना बड़े स्ट्रांग हुआ करते थे, वो जानते थे कि जिंदगी की परेशानियां कैसी हैं। लेकिन आजकल जो पेरेंट्स हैं ना, वो अपने बच्चों को इन परेशानियों से बहुत दूर रखना चाहते हैं। उनको अगर कुछ झेल भी रहे होते हैं ना, तो बच्चों तक नहीं पहुंचने देते। और इसीलिए बच्चे समझ ही नहीं पाते कि स्ट्रगल या डिफिकल्ट टाइम जिंदगी का होता क्या। और जब उन पर पड़ती है आगे जाकर जिंदगी में, तो घबरा जाते हैं, उनका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अपने बच्चों से छुपाइए मत, उन्हें जिंदगी को फेस करना भी सिखाइए। जरूरी है कि आप उन्हें जिंदगी की हर चीज दें, जैसे कि हर माँ बाप चाहते हैं कि जो उन्होंने नहीं भी देखा वो अपने बच्चों को देखने दें और वो उन्हें लेकर के दें। तो जरूर करिए ऐसा, लेकिन इसके साथ साथ उन्हें जिंदगी को फेस करना, जिंदगी के डिफिकल्ट टाइम में कैसे डील करना है, ये भी सिखाना बहुत जरूरी है। राइट, आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए इट हैपेंस, सताक्षी आपके साथ है और आप एंजॉय कर रहे हैं, जी हाँ, आपका ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए Level 1, 33 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au per for best service, complete legal paperwork, marriage certificate and a memorable marriage ceremony. Remember the name Permanand, your professional and friendly civil marriage celebrant since 2003.
2: जी हाँ, यही segment इस वक्त आप enjoy कर रहे हैं सताक्षी के साथ Radio Prasmani 1701 AM पर It Happens में। यहाँ हम सुनाने वाले हैं आपको आज के 3 back-to-back tracks। तो आइए बढ़ते हैं गानों की हैट्रिक में इस पहले ट्रैक के साथ आगे।

0: भोले भोले बम भोले भोले बम भोले।
1: गानों की हैट्रिक आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके साथ है सताक्षी। इस अगली ट्रैक के साथ आइए बढ़ते हैं सफर में आगे की प्लस टू रेडियो ब्रिस्वानी।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
2: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
2: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

कुछ लोग आपको देखकर रास्ता बदल लेते हैं, तो वहीं कुछ लोगों को देखकर आप अपना रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ना इतनी खतरनाक बातें आपसे करते हैं कि आप एकदम संत इंसान हो। आप सोच लें कि भैया किसी को बुरा भला हम बिल्कुल नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोगों की बातें जब वो आपके आसपास या आपके पीठ पीछे आपके बारे में या आपके सामने भी आकर ऐसी बातें करते हैं ना, तो आपको मतलब लगता है कि संत होना करो एक साइड, और आप फिर बुरा भला उनके बारे में बोलने से बिल्कुल खुद को रोक नहीं पाते हैं। वो गालियां जो आपने अंदर छुपा रखी हैं वो कैसे बाहर आ जाती हैं आपको पता ही नहीं चलता है। मतलब आप इतना इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं उनके आगे कि आप समझ ही नहीं पाते। आप बाद में सोचते हैं कि यार ये तो मैंने सोचा था कि मैं करूंगी नहीं या करूंगा नहीं, और ये तो मैं हूं ही नहीं, कभी कभी आपको लगता है। बट होते हैं कुछ लोग इतने खतरनाक। और यकीन मानिए दोस्तों, मतलब हमेशा आपको ये नहीं कहेंगे कि अच्छा बोलिए अच्छा बोलिए। मतलब कभी कभी कहते हैं ना, वो एक कहावत भी है कि टेढ़े के साथ टेढ़ा कभी कभी बनना पड़ता है ना। तो अगर आप किसी ज्यादा टेढ़े के साथ कभी टेढ़े बन भी जाते हैं तो खुद को दोष मत दीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रसवानी, सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस।

इट हैपेंस में ये जो साथ है ये हमारा आपके साथ एक और खूबसूरत और बेहतरीन साथ है, और इस साथ के साथ कुछ बॉलीवुड के मॉर्निंग ट्रैक्स जो हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। और जैसे कि हम आपसे हमेशा कहते हैं कि गाने मॉर्निंग ट्रैक्स हों या सॉन्ग्स हों, दिन के सॉन्ग्स हों, नाइट सॉन्ग्स हों, इवनिंग सॉन्ग्स हों रेडियो पर प्ले होने वाले, आपको हमेशा उस टाइम की वैल्यू बता देते हैं। देखिए सुबह जो गाने हम प्ले करते हैं, अर्ली मॉर्निंग जो गाने हम प्ले करते हैं, वो नॉर्मली स्पिरिचुअल सॉन्ग्स होते हैं, है ना। आप कोई भी चैनल लगा लें, नॉर्मली रेडियो पर या टीवी पर भी मैं देखती हूँ कि स्पिरिचुअल सॉन्ग्स प्ले होते हैं, कथा प्ले होती हैं, जिससे आप मोटिवेट होते हैं, आप जिंदगी के करीब जाते हैं, आप ईश्वर उस परमात्मा के करीब जाते हैं। फिर जब मॉर्निंग शो स्टार्ट होता है, ब्रेकफास्ट शो स्टार्ट होता है, तो आपके लिए वो गाने प्ले होते हैं जो आपको एक एनर्जी देते हैं, है ना। और फिर जैसे आप इवनिंग में होते हैं तो कुछ सुकून भरे गाने आपके लिए प्ले होते हैं, नाइट में कुछ ऐसे गाने जो आपके दिन भर की थकान को मिटा दें, ऐसे गाने प्ले होते हैं, आपके फेवरेट गाने, आपके ज़िंदगी के खास गाने प्ले होते हैं। सो रेडियो ना एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर पल, आपके दिन के हर पल सुकून देने की पूरी कोशिश करती है। तो चलिए इस कोशिश को हम आगे लेकर चलते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो प्रस्वानी सताक्षी के साथ, इंजॉय करते रहिए इट हैपेंस, और अभी इंजॉय कीजिए इस गीत को।